0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலா சுஃபலா மலய ஜ சீதலா சஸ்ய

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 5:58 और 20 सेकंड हुए हैं। आज दिन मंगलवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 30 जून सन 2026। 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6 बजने को है हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में

0: श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं समूह स्वर में मातृवंदना।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृवंदना। रचना भीष्म सिंह चौहान की थी, संगीत सरबत हुसैन का। अर्चना कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं चंद्रशेखर पांडे की ये गणेश वंदना, हरिओम शरण और साथियों की आवाजों में।

अर्चना कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं पीयूष नागर और दर्शना भोता से सुरेन ठाकुर मेहुल की ये भक्ति रचना। संगीत है अर्षित देसाई का।

अर्चना कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं विजय शंकर से डॉक्टर अजय प्रसून की ये भक्ति रचना। संगीत है उत्तम चटर्जी का।

विजय शंकर और साथियों की आवाजों में डॉक्टर अजय प्रसून की भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे। संगीत उत्तम चटर्जी का था। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:25 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको जानकारी देते हैं आज दिन भर के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में यानी 6:30 पर होगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से 6:55 पर। सुबह 7 होगा रोजाना का क्रम सुबह सुबह। कृषि संकेत कार्यक्रम 7:05 से होगा। प्रादेशिक समाचार होंगे भोपाल केंद्र से 7:10 से। मन चाहे गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:20 से। संगीत सरिता कार्यक्रम का वक्त होगा 7:45। समाचार प्रभात सुबह 8 दिल्ली केंद्र से और 8:15 पर होगा लोक संगीत कार्यक्रम। 8:30 पर कार्यक्रम होगा पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। इसके अंतर्गत भेंट वार्ता, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर ये विशेष भेंट वार्ता आप सुनेंगे। विषय होगा महिला नेतृत्व से विकास की नई ऊंचाइयों तक। इस भेंट वार्ता में आप सुनेंगे सागर लोकसभा क्षेत्र की माननीय सांसद डॉ

डॉक्टर लता वानखेड़े से दीपक निषाद की बातचीत। 9 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। भोपाल से होगी जिले की चिट्ठी 10 बजे और 10:05 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रागनी। 10:30 पर होंगे आपकी फरमाइश के फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। 11 बजे से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य गोष्ठी का प्रसारण होगा। प्रतिभागी रचनाकार होंगे अनिकेत दुबे, मीता कन्नौजिया सिम्मी और हरिओम सेन। संगीत सरिता कार्यक्रम होगा 5:30 से। शाम 6 बजे चित्रपट संगीत लोकरंग कार्यक्रम 6:15 से। 6:30 से ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले सेमी फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। सात बजकर 30 मिनट पर होगा खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसानवाणी। समाचार संध्या 8:45 से और 9 बजे से ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच का आंखों देखा हाल जारी रहेगा। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे से, अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर और 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा। तो ये थी जानकारी आज दिन भर के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

एफएम पेंट 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम पांच वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और साथी। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:40 हो चुके हैं। पेश हैं भूले बिसरे गीत।

मेरी। हवा तू उनसे जाकर कह दे एक दीवाना आया है।

0: अजी आंखें हुई है चार, तुमको देखे बिना न तब से मिलता हमें करार।
1: अच्छा,
0: यही अफसाना लाया है।

तुझे मैं हो जाऊं कुर्बान। एक झलक दिखला दो रानी, दे दूं अपनी जान। एक झलक दिखला दो रानी, दे दूं अपनी जान। यही नजराना लाया, यही नजराना।

0: रमोला और मोहम्मद रफी की आवाजों में रिमझिम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम थफन का लिखा ये गीत। संगीत है सलिल चौधरी का, फिल्म का नाम है तांगा वाली।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं काला बाजार फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। गीत शैलेंद्र का है, संगीत एस डी परमन का।

भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री 420 फिल्म का गीत, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है आपका अपना रेडियो दोस्त मनोज सोनी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कई बार ऐसा होता है कि सुबहें हर रोज से थोड़ी अलग सी जान पड़ती हैं। कोई दोपहर को ऐसा लगता है कि ऐसी दोपहर पहली बार आई है। कोई शाम इतनी अलग कैसे कि कभी तो हमारा ध्यान ही उस पर नहीं जाता और कभी इतनी पुरकशिश कि उसमें खो जाने को जी चाहता है। कुछ रातें इतनी हसीन कैसे हो जाती हैं कि आसमां के सारे चांद तारे अपनी चमक से हमें ढक लेते हैं और कभी वही रात हमें अपने अंधकार में डुबो देती है। हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये हमारे अनुभवों में इतना विरोधाभास कैसे पैदा हो जाता है? श्रोताओ, एक विचार है जिससे हमने सीखा है कि दुनिया हमारे लिए कैसी है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस दुनिया को कैसा बनाना चाहते हैं। एक दूसरा विचार है कि हमारी सकारात्मकता बुरे से बुरे दौर को भी हमारे लिए सुखद अनुभव में बदल सकती है। एक विचार हमारी दृष्टि से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि हमारा नजरिया किसी भी चीज को हमारे लिए सुखद या तनावपूर्ण बनाने के लिए जिम्मेदार है। श्रोताओं, इन विचारों के मूल में अगर जाकर थोड़ा चिंतन किया जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अच्छा या बुरा, इसका मूल रूप से संबंध दुनियावी कारकों से ना होकर हमसे ज्यादा होता है।

0: तात्कालिक स्थितियों में हमारा व्यवहार। श्रोताओं, बदलते परिवेश और तेज जीवनचर्या के इस दौर में कई बार हम तनावपूर्ण माहौल में घिर जाते हैं और लगातार इस तरह से लंबा समय हम गुजारें, ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार और समाज के लिए शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते। इससे बचने के लिए हमें वे सारे ज़रूरी उपाय करते रहने होंगे जिनसे हम तनावहीन रहें, स्वस्थ रहें, ऊर्जामय रहें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कठिनाइयों को हम यथा योग्य सम्मान ही दें। अत्यधिक गंभीरता से कई बार छोटी मोटी उलझनें भी बड़ा रूप ले सकती हैं, तो ऐसे में हमारा दृष्टिकोण ही वो हथियार हो सकता है जिससे हम हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को हरा सकते हैं। अपनी कमजोरियों को समझकर उनको दुरुस्त करते हुए अपना हर दिन हर सुबह खास बनाने के लिए ये सकारात्मक चिंतन मनन करते रहना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे रोजाना का क्रम सुबह सुबह FM बैंड 102.6 MHz पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं कृषि संकेत।
1: किसान भाइयों, अब हम थोड़ी सी अपनी खेती जो रासायनिक खेती हो रही है उससे हटके चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में जो हमारी रासायनिक खेती हो रही है उस रासायनिक खेती का परिणाम ये हो रहा है कि तमाम सारी जो है वो बीमारियां मनुष्यों में जो कभी नहीं होती थी, और खासकर कि गांव में हम देखते थे कि पहले लोग गांव में अपना स्वस्थ जीवन जीने के लिए शहरों से गांव की तरफ पलायन करते थे, वहां स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन अब चूंकि रसायनों का असंयमित और असंतुलित रूप से प्रयोग का परिणाम ये हो रहा है कि हमारा जो कुछ भी उत्पाद मिल रहा है खेती से इस समय, वो सब हमारे स्वास्थ्य को फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको जरूरत है कि हम जहर मुक्त खेती करें, और उस प्राकृतिक खेती जिसका नाम दिया गया है इसकी बात अभी सब जगह हो रही है। और हम जहां कहीं भी किसानों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसान के पास 2 एकड़ भी जमीन है तो आधा एकड़ हिस्से में अपनी प्राकृतिक खेती जरूर करें। प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम है, इसमें किसी प्रकार का कोई जादू नहीं है, न कोई करिश्मा है, न कोई वैज्ञानिक। ये वो पद्धतियां हैं जो हमारे बरसों पहले लोग किया करते थे। हमारे पहले की पीढ़ी जो है वो प्राकृतिक खेती ही करती थी, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक खेती करती थी, जहर मुक्त अन्न पैदा करती थी, जहर मुक्त सब्जियां पैदा करते थे और खाते थे, उसको खा करके 100 साल तक जीवन जीते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन आज ये स्थितियां हैं कि रसायनों के असंतुलित और असंयमित प्रयोग से हमारी खेती में जो कुछ भी उत्पाद मिल रहा है वो हमारे मानव स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है, जिसके लिए जरूरी है कि प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम है, प्राकृतिक संसाधन जो हमारे खेत में, हमारी जमीनों में, हमारे गांव के परिवेश में जो उपलब्ध है, उनका हमको भरपूर उपयोग अपनी खेती में करना है। प्राकृतिक खेती में किसानों को अपने खेत पर बीज उपचार करने से लेकर के कीड़े मारने तक दवा सारी अपनी उसको स्वयं के अपने संसाधनों पर तैयार करना है। बीज उपचार करने के लिए किसान बीजामृत बना ले, और बीजामृत बनाने के लिए कोई कुछ बाहर से किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ देसी गाय का प्लास्टिक के ड्रम में गोमूत्र इकट्ठा कर ले। गोमूत्र इकट्ठा करने के बाद देसी गाय का गोबर इकट्ठा कर ले और थोड़ा सा उसमें चूना, 50 ग्राम चूना मिला दे, प्लास्टिक का ड्रम ले ले, उसमें जो है वो 20 किलो गोबर और 20 लीटर गोमूत्र ये मिला ले, और 50 ग्राम चूना मिला करके उसको ड्रम के अंदर रख दे छायादार जगह में, 2-3-4 दिन के लिए इसको छोड़ दे। सिर्फ सुबह शाम उसको डंडे से क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में सिर्फ 2 बार डंडे से, लकड़ी के डंडे से चला दे। आपका 1 हफ्ते के अंदर जो बीज उपचार करने वाला मटेरियल बन के तैयार होगा, वो आपके बीज अगर आप इससे उपचारित करते हैं तो आपके बीज को फफूंद से, बैक्टीरिया से, वायरस से, यहां तक कि निमेटोड जो सबसे सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म नुकसान देने वाला कीड़ा है, नुकसान करने वाला, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसान जो हम खड़ी फसल में जरूरत होती है खाद डालने की, उसके लिए जीवामृत बना ले, बीजामृत बना

0: बना ले, घन जीवामृत बना ले, और इनमें सब में वही चीजें लगनी है। जैसे किसान जीवामृत बना रहा है, उसमें देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, और जो बेसन या कुछ दाल की जो फसलें होती हैं, इनका दाल का आटा, और पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी, जो पुराने पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे किसान एक मुट्ठी मिट्टी लेता है, उसमें मिलियंस अरबों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं लाभ देने वाले। आपने सबने भी देखा होगा कि कहीं गांवों में आसपास कहीं अगर पुराना पीपल या बड़ का पेड़ दिखता है, उसके नीचे आप चले जाओ, देखो उसकी जमीन इतनी आपको समृद्ध मिलेगी, इतनी ताकतवर जमीन मिलेगी, इतनी न्यूट्रिटिव मिलेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि लगातार पीपल और बरगद के पेड़ से पत्ते गिरते रहते हैं और वहीं डिकम्पोज होकर के अच्छी बढ़िया ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते रहते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल की बहुत कम मात्रा है। ऑर्गेनिक कार्बन एक तत्व है जिसकी मात्रा अगर एनालिसिस की जाए तो जो भारी काली जमीनें हैं उनमें भी बहुत कम देखने में मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम खेत में ऑर्गेनिक मटेरियल का उपयोग करें। और ये जो हमने कहा कि देसी गाय का गोबर और गोमूत्र और ये बेसन और ये दाल की जो आटा है, ये सब क्या हमारी हमारे खेत में मिट्टी में तमाम सारे मिलियंस लाभदायक जीवाणु है, ये उनके लिए फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ है। जब हम इसको खेत में डालते हैं तो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु सबको खाद्य पदार्थ मिलता है, वो अच्छे मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं और अपना बेहतर काम करते हैं।
1: प्राकृतिक खेती की जानकारी इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विशेषज्ञ थे डॉक्टर एस के तिवारी। ये आकाशवाणी सागर है, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल है और इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: Applications launch was going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण MOU भी हुआ। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में PM केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 MRI मशीनें, 11 मेमोग्राफी मशीनें तथा 308 AI सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माताजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा व

0: कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जलगंगा संवर्धन अभियान की इस अल्पावधि में ग्रामीण, नगरी, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संबंधन के कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में लगभग 278 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र के लगभग 225 गांवों के 2.5 लाख से अधिक परिवारजनों को सुदृढ़, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सशक्त, समृद्ध एवं विकसित गुना के निर्माण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं।
1: जिस बमोरी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस बमोरी में आज 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा हनुमान में स्थापित हो रहा है 280 करोड़। मैं देश का ऊर्जा मंत्री रहा हूँ, उस जमाने में 200 केवी का सबस्टेशन
2: मुंबई, कलकत्ता,
1: बंगलुरु
2: यहाँ लगते थे।
1: मोदी जी के जमाने में 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा हनुमान में लग रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे, जिसमें खेती से जुड़े मॉडल और आधुनिक कृषि के तरीकों, मृदा प्रबंधन, फसल सुरक्षा, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहल प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल क्षति, गांवों और बुनियादी ढांचों की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए 12 जून से ये अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके तहत एक ग्राहक या एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली में नोटरी नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नया आवेदन मॉड्यूल लॉन्च किया। ये मॉड्यूल योग्य कानूनी पेशेवरों और अधिवक्ताओं को नोटरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि विधिक मामलों का विभाग नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के मुंबई स्थित कौंसुल जनरल नबील ताऊआती ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में मुलाकात की। इस अवसर पर काउंसलेट जनरल के साथ मुंबई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कौस्तुभ परिहार तथा कृषि सलाहकार प्रसाद पारते भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग तकनीकी नवाचार एवं नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। उज्जैन के महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार तथा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के मोतीसागर तालाब पर होमगार्ड जवानों का विशेष तैराकी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आगामी 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इंदौर जिले के छोटी बेटमा स्थित विशिष्ट आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में पीटीआई के रिक्त पदों के लिए 6 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आज डिंडौरी जिले के प्रवास पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे समनापुर और कुटेला क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। माखालाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दिया गया है। झाबुआ में युवा संगम का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में किया जाएगा। बैतूल में हॉकी प्रतिभा खोज चयन ट्रायल में जिले के युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। और कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्वाचन सदन स्थित ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम में शामिल, कहा स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:20 हो चुके हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अनोखी अदा फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी की मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंकीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निसा सबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या और उनका परिवार, जनकपुरी सहारनपुर से तो जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस टिकेस्ट्रो और उनका परिवार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंता, जसवीर जस्सी सीता और गीता।

लता मंगेशकर की आवाज में गुलशन बावरा का लिखा गीत आप सुन रहे थे। संगीत था आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम था अगर तुम ना होते। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई थी आप सभी की। बरका काना से सुनना चाहते थे अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक और उनका परिवार। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी बिट्टू, साजिता और हेना कौसर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार टावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे।

मनचाहे गीतों के कार्यक्रम में आइए, अब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। नेहरू चौक पैठर से सुनना चाहते हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता, आरती, प्रसाद, सोनल, बेबी सिया और उनका परिवार। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और उनका परिवार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, टिम्पल, बाबू प्रियांश और भाव्या देवांगन। ग्राम बनेगा तहसील बंडा जिला सागर से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा, रविंद्र सेन, संगीता सेन, महेंद्र, रामदेवी, सुरेंद्र, नंदनी, रिया, गौरव, राज, आर्यन, कौशल और दीप्ति। आप सभी की फरमाइश पर अभी आपने सुना माया फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत मजरू का था, संगीत सलील चौधरी का। आइए अब सुनते हैं सच्चा झूठा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत इंदिवर का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी की। बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से सुनना चाहते हैं प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल, लखवीर, रानू, कृष्णा, श्री

0: श्रीमती छिंदू, प्रवीण, शीतल, नवीन, निशान, अनमोल, चटकू, मटकू और उनका परिवार। गांव चौहलता बागपत से संजय ढिंकिया और नमन ढिंकिया। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। कोल्हापुर से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई अंकिता, अनिकेत और उनका परिवार। किवली गांव पुणे से अंकिता कांबले सैदापुरकर, विजय बेबी शौर्या, श्रेयश और उनका परिवार। कल्याण मुंबई से डॉक्टर सूरज सुरवे, नमिता सुरवे और प्रकाश सुरवे। घाटकोपर मुंबई से वैभव चौहान, आभीर भीमराव और सुजाता चौहान।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो,

सच्चा झूठा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत इंदिवर का था, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत के साथ ही मनचाहे गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।

शाहिद मीर की लिखी गज़ल भी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं फिराक, गोरखपुरी की लिखी ये गज़ल चित्रा सिंह की आवाज़ में।

संगीत सरिता कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सपा अफगानी के लिए ये गजल लता मंगेशकर की आवाज में।

0: सबा अफगानी की लिखी गजल भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। इस गजल के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। 8 बजने को है समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से होगा थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
4: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा

सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है।

0: समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन, व्यापार क्षेत्र में तनाव कम

0: करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला

0: छापी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम लोधी से ये लोक शैली बद्ध हनुमान वंदना। आइए अब सुनते हैं सरस्वती झा और साथियों से ये लोक गीत।

धीरेंद्र नागर के गाए इसी लोक गीत के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर के अंतर्गत केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष भेंटवार्ता। विषय है महिला नेतृत्व से विकास की नई ऊंचाइयों तक। इस भेंटवार्ता में प्रस्तुत है सागर लोकसभा क्षेत्र की माननीय सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े से दीपक निषाद की बातचीत।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद। हम सभी जानते हैं कि जून 2026 में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस अवधि में बुनियादी ढांचे से लेकर के विकास के कई जन कल्याणकारी योजनाओं तक सभी क्षेत्रों में व्यापक सामाजिक आर्थिक बदलाव देखे गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सागर जिले में भी महिला नेतृत्व से विकास की नई ऊंचाइयों तक सफलता के कई सोपान तय किए गए हैं और इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे बीच आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं सागर संसदीय क्षेत्र की सम्मानित सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जी। मैम, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद।
1: और हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और कई योजनाओं को नई ऊंचाई मिली है, नए पंख लगे हैं, तो आप किन योजनाओं को, किन उपलब्धियों को याद करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहेंगी?
2: देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक, हिंदुस्तान के क्षितिज पर दैदीप्यमान हस्ताक्षर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से हिंदुस्तान की दशा और दिशा को बदला है, जिस तरह से 2014 में उन्होंने जब सबसे पहले शपथ ली थी और लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था उसको शब्दशः धरातल पर उतारने का उन्होंने कार्य किया है और आज उनके कार्यकाल के सफल यशस्वी 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो ऐसे कई कार्य हैं जिन्होंने हर वर्ग को छूना है, काम किया है, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है और जिस तरह से उन्होंने भारत को विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना की है, जो मंत्र दिया है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो हमने मनाया था तो उन्होंने समस्त भारतवासियों को पंच प्रण दिए थे जिसमें हमारा एक प्रण है विकसित भारत। तो विकसित भारत के निर्माण के लिए जो भी उसके आधारभूत तत्व हैं जिनसे हम विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, उन्होंने कहा कि देश में कोई जातियां नहीं है, देश में केवल चार जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। यदि हमने इनका सशक्तिकरण कर दिया, इन्हें सशक्त कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकती और इसी दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं, निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज हमारा युवा आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो, युवा हमारा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। किसानों की जिस तरह से समृद्धि हो रही है, कृषि को लाभ का धंधा बनाने के जिस तरह से प्रयास हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं वे ऐतिहासिक है, अद्वितीय हैं। इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करना चाहता हूं, इस दिशा में भी उन्होंने ठोस कदम उठाया और उन्होंने देश में आज 14 करोड़ जिस तरह से शौचालय बनाकर आधी आबादी को जिस तरह से उन्होंने एक उनका सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है, इज्जत घर बनाकर दिए हैं, ये चिंता कभी पूर्व में किसी ने नहीं की कि महिलाओं के लिए ये कितनी तकलीफ की बात होती थी कि इस जमाने में भी आज़ादी के 50 वर्ष बाद भी किसी ने महिलाओं की इस दिक्कत को नहीं सोचा। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो शब्दशः किया और आज सभी, ऐसा कोई घर नहीं होगा देश में जहां शौचालय ना हो। इस तरह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, आज हमारे देश में हमने 10 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का ध्येय लिया है जिसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। अपने आत्म सम्मान के साथ वो जी रही हैं, वो स्वावलंबी बनी हैं, आत्मनिर्भर बनी हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी सरकार का 12 वर्ष का है। और साथ ही जिस तरह से आप सब देखते हैं कि इतनी सारी योजनाएं, और आज जिस तरह से जनधन योजना के माध्यम से हम समझते हैं हमारे देश के 95 लोगों के खाते खुले हुए हैं और लोग जनधन योजना का लाभ ले रहे हैं, जिस तरह से सारी की सारी योजनाओं का 100% लाभ हितग्राहियों को उनके खाते में मिल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत यह बना है, यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ साथ ही जिस तरह से युवाओं के लिए स्वरोजगार से जुड़ने के लिए स्टार्टअप जैसी योजनाएं, युवा स्वरोजगार योजनाएं, युवाओं को 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक का लोन देकर उनको उद्योग स्थापित करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको रोजगार बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। हमारी चारों जात, जो उन्होंने कहा है कि देश में कोई जात पात नहीं है, केवल 4 जातें हैं, उनका सशक्तिकरण करने की दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का जो संकल्प लिया है, जिस तरह से लोक कर्तव्य पथ बना है, जिस तरह से हमने धारा 370 हटाकर हमारे इतिहास के कलंकों को धोने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और भी ऐसी राम मंदिर बनाकर देश के 140 करोड़ लोगों के आस्था के केंद्र भगवान राम का मंदिर बनाकर लोगों में जो विश्वास और लोगों में जो आस्था और जो भक्ति थी उसको जागृत करने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, ये सब उनकी जो 12 वर्ष की उपलब्धियां हैं। देश की सुरक्षा सीमा की यदि मैं बात करूं, जिस तरह से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके जो उन्होंने संदेश देने का काम किया है कि अब भारत ना रुकता है, ना झुकता है, ना दबता है, अब भारत भारत है, भारत के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, ये विश्वास देश के 140 करोड़ लोगों को देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, ये हमारे 12 वर्ष की अनंत उपलब्धियां हैं।
1: जी, अनंत उपलब्धियां हैं पिछले 12 वर्षों की, और महिला, युवा, किसान कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको छुआ नहीं गया है, विकास के नए आयाम से जोड़ा नहीं गया है। अब हम सागर के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहेंगे मैम, और दुनिया से कदम मिलाकर चलने के लिए विकास की रफ्तार बहुत जरूरी है, और सागर जिले में भी रेलवे के क्षेत्र में जो कई उपलब्धियां अर्जित की गई हैं, रेलवे लाइन के विस्तार की बात कर लें हम, या फिर दक्षिण तक सागर से ट्रेन चलने की बात कर लें, रेलवे की कनेक्टिविटी की बात कर लें, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
2: देखिए, सागर बुंदेलखंड का मुख्यालय कहलाता है और यहाँ पर ट्रेनों की कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ से पूरे देश का व्यक्ति यहाँ पर है, चूँकि यहाँ पर कैंट एरिया है, यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बीना रिफाइनरी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो मुझे लगता कि बाहर बाहर से लोग यहाँ आते हैं, उस हिसाब से ट्रेनों की कनेक्टिविटी बहुत कम है। जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मेरा संकल्प पत्र था, उसमें मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं आपकी जो विशेष मांगे हैं, जो विशेष ट्रेनों की आपको ज़रूरत है, उसको ज़रूर लाने का मैं प्रयास करूंगी। तो उसी दिशा में मैंने निरंतर, अभी मेरा प्रयास जारी है और अंत तक जारी रहेगा। जिस तरह से अभी सागर स्टेशन को हमने अमृत भारत योजना के अंतर्गत 19 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी हमारा स्टेशन आप देखिए बहुत खूबसूरत बन गया है, उसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के विकास तथा नए प्लेटफॉर्म 3 और 4 के निर्माण हेतु लगभग 15 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत कराए हैं। साथ ही बीना स्टेशन जो हमारा है, जो हमारा जंक्शन है, उसको भी हमने अमृत भारत योजना में शामिल कराया है, उसका भी बहुत जल्दी कार्य शुरू होने वाला है। साथ ही मकरोनिया का जो हमारा स्टेशन है वो आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है, जो हमारा संकल्प था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। साथ ही रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य बहुत गति से आगे चल रहे हैं, इसके साथ ही हमने बहुत सारी नई रेल सेवाएं यहाँ पर शुरू करने का कार्य किया है, जिसमें भोपाल जोधपुर ट्रेन का खुरई स्टेशन पर नया ठहराव किया है, भोपाल धनबाद एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ कराया है, साथ ही बीना रुठियाई

0: मेमू ट्रेन सेवा शुरू की है। उसके साथ ही सागर रानीपुर रुठियाई मेमू ट्रेन का भी संचालन शुरू हो गया है। कई ट्रेनों के विस्तार एवं नए स्टॉपेज की अभी स्वीकृतियां जारी हो रही हैं धीरे धीरे। इसके साथ ही नई रेल लाइनें भी अभी स्वीकृत हुई हैं, जिसमें सागर छतरपुर नई रेल लाइन का DPR सर्वे शुरू हो गया है। सागर भोपाल नई रेल लाइन का सर्वे भी शुरू हो गया है। इसके बाद सागर दमोह हटा खजुराहो रेल लाइन का भी सर्वे शुरू हो गया है। इस तरह से जो रेल का विस्तार हुआ है उसमें बीना कटनी चौथी लाइन स्वीकृत हुई है। बीना इटारसी चौथी लाइन का विकास कार्य शुरू है। एक्सप्रेस वे एवं राष्ट्रीय राजमार्गों की यदि मैं बात करूं तो सागर और भोपाल इस तरह 4 लेन भी हमारे यहाँ बन रही हैं। सागर रेल विस्तार के साथ साथ हमारी ऐसी बहुत सारी रोडें हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी, वो हमारी अभी शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही अभी हमारी जो नई ट्रेन कल परसों से ही स्वीकृत हुई है, जिसमें हमारी जो दिल्ली से अंबिकापुर के लिए जो चलती है वो एक हफ्ते में एक बार चलती थी, तो अब वो 2 बार चलेगी क्योंकि हमने इसके हफ्ते में 3 दिन चलाने की मांग की थी, जिसमें 2 दिन के तो स्वीकृत हो गए। मुझे आशा है कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी हमारी इस मांग को भी पूरा करेंगे।
1: जी मैम, आपने रेलवे की जो योजनाएं सागर शहर में चल रही हैं, सागर जिले भर में चल रही हैं, पूरे बुंदेलखंड वासियों को इससे लाभ मिलेगा। रेलवे के साथ साथ आम आदमी की कनेक्टिविटी के लिए जो राजमार्गों का विस्तार होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सागर को कई सौगात इस क्षेत्र में मिली हुई है, तो सागर के हिस्से में क्या आया इसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमें।
0: देखिए, हमारे जो मंत्री हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री, परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, अभी वो विदिशा आए थे, तो वो हमें हमारे सागर के लिए बहुत बड़ी सौगात देके गए हैं। चूंकि हमारा संसदीय क्षेत्र विदिशा की भी 3 विधानसभाएं आती हैं, उसमें सिरोंज, कुरवाई और शमशाबाद, तो वहाँ के लिए सबसे बड़ी मांग, वहाँ एक भी 4 लेन नहीं थी, तो वहाँ के लिए हमारी बीना का जो रिंग रोड है उस रिंग रोड को कवर करते हुए और महलुआ चौराहे से लेके कुरवाई, कुरवाई से शमशाबाद, शमशाबाद से सीधे विदिशा को जोड़ते हुए नई 4 लेन देने का उन्हें 16,000 करोड़ की हमें सौगात दी है। ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके साथ ही सागर भोपाल 4 लेन परियोजना जो अभी चल रही है, जिसमें मोती नगर चौराहे से बेरखेड़ी 22 किलोमीटर की एक रोड बन रही है जिसकी लागत 400 करोड़ है। बरखेड़ी से रानीपुरा गड़पहरा 28 किलोमीटर की एक रोड और बन रही है जो 525 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही सागर रिंग रोड बन रही है जो जनता के लिए उपलब्ध होने वाली है बहुत जल्दी। इसके साथ ही 26 अंडरपास एवं सर्विस रोड निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। सागर कानपुर 4 लेन परियोजना जो लगभग 600 करोड़ रुपए की है वो अंतिम चरण में है, उसका कार्य चल रहा है। इसके साथ ही सिरोंज शमशाबाद विदिशा 4 लेन जिसकी मैंने अभी बात की, हाईवे ये स्वीकृत हो गया है। और हमारे यहाँ जो इतने सारे 12 ब्रिज बन रहे हैं, सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा ब्रिज यदि किसी लोकसभा में बन रहे हैं तो वो सागर लोकसभा में बन रहे हैं। अभी बहुत सारे उसमें से 2-3 तो तैयार हो गए हैं जिनका लोकार्पण भी हो चुका है, बाकी जो हो रहे हैं वो बहुत जल्दी उसमें गति से काम हो रहा है और हम उसके लिए निरंतर हम उसकी स्वयं समीक्षा करते हैं।
1: राजमार्गों का जाल बिछ रहा है सागर में, ऐसा हम कह सकते हैं। और पुलों की तो आपने बात की कि कितने सारे पुल सागर संसदीय क्षेत्र में जो है बनने जा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। अब हम बात करना चाहेंगे, निवेश की बात करना चाहेंगे, उद्योग जगत की बात करना चाहेंगे, क्योंकि जब भी बुंदेलखंड क्षेत्र की बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि यहां से लोग पलायन करके महानगरों की तरफ जाते हैं रोजगार के लिए। तो उद्योग के क्षेत्र में क्या निवेश के कार्य किए जा रहे हैं और इससे रोजगार की संभावनाओं के कितने द्वार खुलते हैं?
0: हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उनका सबसे पहला ध्यान यदि किसी चीज पे था तो उसका युवाओं के लिए रोजगार। पहला वर्ष जब उनका था तो उन्होंने उसको उद्योग के लिए समर्पित किया, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने इन्वेस्टर्स मीट की, हमारे सागर में भी हुई थी और उसकी एक बहुत बड़ी मीट हुई थी भोपाल में जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे। और मैं तो समझती हूँ कि हमारे सागर को पहली बार इतना बड़ा यदि किसी ने कुछ दिया है तो सागर को दिया है। हमारे मसवासी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 2000 एकड़ भूमि पर औद्योगिक विकास हो रहा है, औद्योगिक हब हमारे यहाँ बनने जा रहा है जिसमें हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार सृजित होंगे। और सागर में लगभग 550 करोड़ रुपए की एक दाल मिल परियोजना भी निर्माणाधीन है जिसका कार्य अभी प्रारंभ है और बहुत जल्दी वो शुरू होने वाला है। इसके साथ ही बीना पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी बीना रिफाइनरी का जो विस्तार किया है उसका कार्य भी अभी निरंतर जारी है। लगभग 49,000 करोड़ की वो परियोजना है जिसमें रिफाइनरी क्षमता पहले हमारी 7.8 थी, अब बढ़कर 11 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने जा रही है। तो ये बहुत बड़ा कार्य हमारे यहाँ हो रहा है। साथ ही एथिलीन क्रेकर एवं पॉलीमर यूनिट की भी स्थापना हो रही है, हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर इसमें सृजित होने वाले हैं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत और बुंदेलखंड के विकास को इसमें नई गति मिलने वाली है क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उसमें हमारे बुंदेलखंड के अधिकांश प्रतिभाओं को उसमें जॉब मिलने की पूरी पूरी संभावना है। कई लोगों को उसमें अलग से निवेश यदि वो करते हैं तो उससे जो रॉ मटेरियल निकलेगा उससे कई तरह की फैक्ट्रियां हमारे यहाँ आने वाली है जो हमारे युवाओं के लिए एक बहुत स्वर्णिम अवसर आने वाला
1: जी
0: है।
1: जी, उद्योग जगत में तो क्रांतिकारी बदलाव कार्य हो ही रहे हैं। पर्यटन उद्योग भी इससे जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है और सागर खासकर जो है खूबसूरत घाटियों पर बसा हुआ, भारत के दिल में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत असीम संभावनाएं हैं यहाँ पर। आप क्या बताना चाहेंगी कि क्या कुछ सागर के पर्यटन उद्योग को लेकर के किया जा रहा है?
0: बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा नौरादेही अभ्यारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व का विकास हो रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने अपने जन्मदिन वहीं आकर मनाया था और कुछ उन्होंने कछुए भी उसमें छोड़े थे, बहुत जल्दी उसमें चीते भी आने वाले हैं। ये बहुत बड़ा इसमें हमारा क्षेत्र कवर हो रहा है, इसमें दमोह जिले को भी इसका लाभ मिलेगा, सागर को भी मिलेगा, नरसिंहपुर को भी मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सागर को ये मिली है। मध्य प्रदेश में उसको हम टाइगर रिजर्व भी बना रहे हैं, बहुत सारे टाइगर उसमें आने वाले हैं। साथ ही एमपी टूरिज्म द्वारा पर्यटन स्थलों का भी विकास निरंतर हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में एक उदयपुर आता है उसका भी निरंतर विकास हो रहा है, गढ़पहरा का आप देख रहे हैं उसका भी विकास हो रहा है, जो भी हमारे यहाँ से पौराणिक क्षेत्र है उनका भी निरंतर विकास सुनिश्चित हो रहा है। साथ ही हमारे यहाँ 100 करोड़ से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संत रविदास कॉरिडोर हमारे यहाँ बन रहा है मकरोनिया में, जिसका बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। ये पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ हमको एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। उसके साथ ही रक्षा भूमि हस्तांतरण के लंबित आरओबी निर्माण के कार्यों को गति मिली है। कैंटोनमेंट क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने के भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से निरंतर हम अपने क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ और भी जो सारी चीजें हैं उसको बढ़ाने के लिए दिशा में प्रयास हमारे
1: जी। मैम, हम अब बात करना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण की। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला नेतृत्व से विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, हम प्रत्यक्षता देख रहे हैं इसे, लेकिन आपके नेतृत्व में खासकर जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए आपका क्या विजन है, आगे क्या काम करना चाहती हैं और अभी तक आपने क्या कुछ हासिल कर लिया है?
0: देखिए, मैं समझती हूँ महिलाओं को यदि सशक्त करना है तो उनके हाथ में स्किल होना चाहिए। जब उनके हाथ में कोई स्किल होगा तो वो उससे आत्मनिर्भर बनेंगी। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश में हमारी बहनों को लाडली बहने बनाया है, उस तरह से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ही एक प्रयास है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहनें यदि कुछ करना चाहती हैं तो उसके लिए उनके अंदर कौशल कैसे विकसित हो, इस ओर पहले हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मेरे निरंतर प्रयास शुरू हैं। मैंने कौशल विकास मंत्री हमारे जो हैं जयंत जी, उनसे भी कई बार बात की तो उन्होंने हमारे यहाँ 2 बहुत बड़े बड़े कौशल उन्नयन विकास केंद्र स्वीकृत किए हैं जिनका भी संचालन अभी शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी वो शुरू होगा, जिसमें महिलाओं से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनको सिखाने के लिए, चाहे हम सिलाई बुनाई की बात करें या हैंडीक्राफ्ट चीजें जो होती हैं उसकी बात करें, वो सारी महिलाओं के लिए, महिलाएं जो कर सकती हैं उसका प्रशिक्षण उनको दिया जाना चाहिए। जिस तरह से अभी हम ड्रोन दीदी की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी के साथ साथ ड्रोन दीदी बनाने का भी जो लक्ष्य रखा है, ड्रोन दीदी के लिए प्रशिक्षण, सौर ऊर्जा का प्रशिक्षण, डिजिटल प्रशिक्षण, इस तरह से विभिन्न तरह के प्रशिक्षण देने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। हमारे यहाँ अभी और 2 नए ITI भी स्वीकृत हुए हैं और हमारा कहना है कि हर ब्लॉक पर ऐसे ITI खोले जाने चाहिए जिसमें महिलाओं को ज़्यादा दूरी तय ना करना पड़े और उनको उनके स्थान पर ही प्रशिक्षण मिले। इस दिशा में हमारी निरंतर कार्य चल रहा है। महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता और सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी हम समय समय पर करते हैं। महिलाओं में विधिक जागरूकता के शिविर भी हम निरंतर लगाते रहते हैं और महिला अधिकार और सशक्तिकरण अभियान हमारा पहले से ही चलता, जब हम सांसद नहीं थे तब भी हम गांव गांव जाकर महिलाओं को अवेयर करने का काम करते हैं, क्योंकि हम महिला आयोग के अध्यक्ष भी रहे तो हम महिलाओं की जो परेशानी है उससे भली भांति परिचित हैं। इसलिए हमारा मुख्य सबसे ज्यादा हमारा यदि टारगेट यदि कुछ होता है करने का तो यही होता है कि हम महिलाओं को कैसे सशक्त करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र की दीदी लखपति दीदी बने, इस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं।
1: महिलाओं की पीड़ा को समस्या को आपने बहुत नजदीक से देखा है और बहुत बड़ा फोकस एरिया है आपका महिलाओं के सशक्तिकरण के काम के लिए। हम युवाओं की बात भी कर लें थोड़ा सा, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, खासकर खेल के क्षेत्र में उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से।
0: अभी सांसद खेल महोत्सव हुआ था सागर में, हमारे 75,000 बच्चे खेले पूरी लोकसभा में। खेल का ये बहुत बड़ा आयोजन था, एक हजारों खिलाड़ियों ने सहभागिता की, सबने अपने अपने जिनका जो इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग 10 खेल हमने रखे थे तो बच्चों ने उसमें भाग लिया और अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने दिया। यहाँ तक ग्राम पंचायत स्तर से बच्चे ब्लॉक में आए, ब्लॉक से फिर जिले में आए, फिर जिले से संसदीय क्षेत्र में बच्चे आए, जिसमें से हमने 280 विजेता बच्चों को सम्मानित करने का काम किया था। और ये एक बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र के प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र के लिए अचीवमेंट रहा है।
1: जी, सागर खेल महोत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा को एक मंच देने के लिए बहुत बड़ा एक मंच रहा है, प्लेटफॉर्म रहा है और इससे युवा आगे बढ़ रहे हैं। एक और क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र, हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के रीढ़ कहे जाते हैं हमारे किसान भाई, तो किसान भाइयों को लेकर के बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है? मैम
0: देखिए, एक तो हमें सबसे बड़ी परियोजना हमें जो मिली है मिसवासी सिंचाई परियोजना, जिसमें 286 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। 7200 हेक्टर क्षेत्र जिसमें हमारा सिंचित होगा, भूमि को सिंचाई मिलेगी और किसानों को उनकी आय में वृद्धि होगी। कृषि को हम लाभ का धंधा बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, कई ऐसे हमारी निरंतर प्रशिक्षण हो रहे हैं, नई वैज्ञानिक पद्धतियाँ उनको सिखाई जा रही हैं जिससे हम कृषि को और अत्याधुनिक टेक्निक से कृषि कर सके और हमारे युवा भी उसमें जुड़े, क्योंकि कृषि हमारा खास धंधा हमारे देश का कृषि है और यदि हमारे युवा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो हम कृषि को बहुत आगे तक उसको हम पहुंचा सकते हैं। इसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना, ये बहुत बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है, जिसमें हमारे कुछ क्षेत्र नरियावली का है, कुछ क्षेत्र सुर्खी का है, कुछ बीना का है, कुछ खुरई का है और हमारी वो विदिशा की जो तीनों विधानसभाएं हैं उसमें भी केन बेतवा लिंक परियोजना आई है, जिससे हमारी अब कृषि व्यवस्था लहलहाएगी, हमारे लोगों को पानी की कोई कमी नहीं होगी, उसमें पीने का स्वच्छ पानी भी मिलेगा और साथ ही कृषि भूमि के लिए भी पानी मिलेगा। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी के मैं समझती हूँ हमारे सागर के लिए एक बहुत बड़ी देन है।
1: जी, बहुत बड़ी देन है और सिंचाई की समस्या नहीं रह जाएगी केन बेतवा लिंक परियोजना बाद, और किसानों की आय में वृद्धि हो इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बस आखिरी में चलते चलते मैम, सागर को लेकर के आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या रोड मैप है जिस पे आप काम कर रही हैं?
0: देखिए, सागर स्मार्ट सिटी बना है तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अब हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं वो सागर को देखते ही बड़े खुश होते हैं कि जब से सागर स्मार्ट सिटी बना है सागर की सारी समस्याएं ही दूर हो गई हैं। मुझे सागर स्मार्ट सिटी में एयरपोर्ट बनाना है, ये मेरा सपना है। साथ ही अभी मैंने एक दिव्यांग पार्क भी स्वीकृत करवाया है जिसमें हमारे दिव्यांगजनों को बहुत सुविधा मिलेगी। उसके साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें जो मैं समझती हमारे बच्चे NIT, IIT, IIM के लिए बाहर जाते हैं तो उनको वो सारे कोर्स यहीं मिले, इसकी भी मैंने मांग की है जो मुझे लगता बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। हमारे सागर में मुझे कृषि यूनिवर्सिटी मैंने मांगी है जो मुझे लगता हमारे माननीय शिवराज जी जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी मुझे कृषि यूनिवर्सिटी यहाँ पर देंगे। एक बहुत बड़ा हमने स्टेडियम मांगा है जिसमें अत्याधुनिक खेल के उसमें सभी कुछ होगा, जिसमें हमारे बच्चे सभी खेलों में निपुण होकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। तो हमारे जो मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने हमें एक बड़ा स्टेडियम देने की उन्होंने हमसे वादा किया है और बहुत जल्दी हमारे सागर को एक बड़ा स्टेडियम मिलने वाला है। इस तरह से ये हमारी आगे की जो कल्पनाएं हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो प्रयास है और हमारे जनता का जो आशीर्वाद है उससे हम अपने इन सभी कार्यों को सफल कर पाएंगे।
1: जी मैम, हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में सागर विकास के नित्य नए आयाम सोपान तय करेगा और बहुत ही सारगर्भित उपयोगी जनहितैषी चर्चा आपसे हुई। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर के अंतर्गत केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर यह विशेष

भेंट वार्ता अभी आप सुन रहे थे। विषय था महिला नेतृत्व से विकास की नई ऊंचाइयों तक। इसमें आज हमने सुना सागर लोकसभा क्षेत्र की माननीय सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े से दीपक निषाद की चर्चा। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

परदेश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत नदीम श्रवण का। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 9 बजे हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

0: दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, संसद की भूमिका तथा जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। 30 जून 1989 को अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी अवसर की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की। लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। संसद कानून बनाती है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करती है तथा जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाती है। एक सशक्त संसद ही पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितकारी शासन की आधारशिला भी होती है। संसद महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा संवाद, सहमति और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाती है। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको गाना सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में, पिंटू की पप्पी फिल्म से।
1: Beautiful.

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बे ख्याल हो गई चूलिया किसी ने।
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
2: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए भूमि त्रिवेदी और साथियों की आवाजों में कौशल मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है रश्मि रॉकेट।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं थी, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 20 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए मीका सिंह की आवाज में शुभ मंगल ज्यादा सावधान इस फिल्म का गाना, लिखा है वायु ने और संगीतबद्ध किया है तनिष्क वायु ने।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से, इसे गाया शशि और डीजे खुशी ने, गगन आहूजा के शब्द हैं और तर्ज बनाई है शशि डीजे खुशी ने।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।

सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

कार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिरा जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तू प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

0: कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को आप करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संग।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: लोगों की जांच की गई। इस वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस की थीम जीवन रक्षा के अंतर को समाप्त करना, सिकल सेल देखभाल में समानता सुनिश्चित करना रही। कार्यक्रम के दौरान 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की सिकल सेल की जांच की गई और गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों, बच्चों, सिकल सेल पॉजिटिव मरीजों तथा आमजनों को रोग के प्रति जागरूक किया गया। बीते 21 जून को बालाघाट के मुल्ला स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सांसद भारती पारधी की अध्यक्षता में सामूहिक योग में जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर मृणाल मीना, अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ज्ञान भारतम मिशन के तहत बालाघाट जिले में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। अब बात करते हैं किसानों के कल्याण से जुड़ी खबर की। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,36,130 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जिला स्तरीय रैंकिंग में बालाघाट जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2026 माह में बालाघाट जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगातार 2 माह तक प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों में स्थान बनाकर बालाघाट ने किसान कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है। अब बात करते हैं खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र की। विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने चित्रकला के माध्यम से योग, स्वास्थ्य और ओलंपिक मूल्यों का संदेश दिया। इस अवसर पर 35 खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सतीश शर्मा ने कहा कि कड़े परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही भविष्य के ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार होंगे। अब बात करते हैं जिले में प्रशासनिक गतिविधियों की। भोपाल से मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बीते दिनों प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में बालाघाट जिले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां दर्ज कर प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थान बनाया। इसी प्रकार टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण में भी बालाघाट ने 100% उपलब्धि के साथ प्रदेश में पहला स्थान साझा किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पंजीयन में बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। बच्चों की अपार आईडी बनाने में भी बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अब बात साइबर जागरूकता की। बालाघाट जिले में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज ललित शाक्यवार, उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की उपस्थिति में बीते दिनों साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आयोजित सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ललित शाक्यवार ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। युवाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण को लेकर एक अच्छी खबर है। पुलिस सेवा में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस बैंड भर्ती की घोषणा की गई है। इस क्रम में जिला पुलिस बालाघाट द्वारा अमर शहीद आशीष शर्मा निशुल्क पुलिस बैंड प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। वर्तमान में इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 250 से अधिक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रशिक्षण केवल बालाघाट तक सीमित नहीं है, बल्कि बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के युवा भी यहां निशुल्क

प्राप्त कर पुलिस बैंड भर्ती एवं रोजगार की दिशा में अपने सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर हैं। और अंत में बात दो बूंद जिंदगी की। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान चलाया जा रहा है, जहां 3584

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 10:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागनी।

यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।

राग रागनी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती धोंधुताई कुलकर्णी से राग मीरा मल्हार में ये शास्त्रीय गायन।

राग रागनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग मीरा मल्हार में श्रीमती धोंदुताई कुलकर्णी का शास्त्रीय गायन।

की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

आक्रमण फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश प्राप्त हुई थी सरगांव छत्तीसगढ़ ग्राम पीपरलोड से। सुनना चाहते थे दीपेश वर्मा, पूनम और ज्योति वर्मा, यहीं से शिवांश वर्मा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बीबी आलिया और अयान बाबू, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत रोहिणी, ऋषिकेश जीविका और उनका परिवार, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवड़े, श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका सानू कुंभार और अर्चना कुंभार। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है आरटी परमन का, फिल्म का नाम है बरसात की एक रात। इस गीत की फरमाइश हमसे की है आप सभी ने आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुनी जंघेल, आरुषि ओशिका और अंजलि, ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूभाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश, चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सोहान अरजान अबान और उनका पूरा परिवार।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये गीत था बरसात की एक रात फिल्म से। आइए अब सुनते हैं स्वयंवर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत गुलजार का है, संगीत राजेश रोशन का। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी की, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से सुनना चाहते हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी चौहान। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया साईराज और विशाल सपकाल। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और उनका परिवार। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सभी की फरमाइश पर स्वयंवर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

स्वयंवर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आपकी पसंद कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं गुलामी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। गीत गुलजार का है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है आप सभी ने डाबकी रोग अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर और उनका परिवार, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह, गाडगेनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता लोखंडे और उनका परिवार, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजौरिया।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में गुलामी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत गुलजार का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है।
2: जी।
1: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे, जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
2: जी।
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे

0: कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है, यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विवेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
2: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
2: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
2: सबको गले लगाना,
3: सबको गले लगाना,
2: दीपक से सीखो जितना,
3: दीपक से सीखो जितना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: सच्ची सेवा करना,
3: सच्ची सेवा करना,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
3: जीवन पथ में बढ़ना,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
3: और धुएं से सीखो हरदम,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था अपने जंगल में खो देंगे

0: तालाब बड़ा सा। बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: खो देंगे भाई खो देंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम। राजन अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
3: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
4: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
0: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
4: तो ये बात हाँ, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
6: क्या
5: क्या
6: क्या?
4: ऊंचा सब तक कोयल गाए, सब तक सांप सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
2: हाँ हाँ यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
0: दम लगा के कू।
6: हईशा।
0: दम लगा के कू।
6: हईशा।
4: काम काम काम। शाबाश शाबाश। सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? आ, करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा दाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपी है ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है। काम काम काम।
7: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
4: काम काम काम। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
7: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको। अरे काले कौवे मुझको

0: बख्शो।
1: काँ काँ काँ।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: जिसने तो बस रट ही पकड़ ली।
1: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
0: अरे
1: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
0: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
2: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना, अभी तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
3: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: का, का, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है।
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
5: भाई? मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही

0: शक्ल नजर आ जाती है।
1: वैसे वो क्या करता है आजकल? इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
2: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है, रोने जैसे गाने की।
3: काँव काँव। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था, वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो
3: पिए दूजा पानी।

0: बारिश बिन पानी
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पापी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पापी है भाई।
3: पानी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। शायर हैं ताहिर फराज रामपुरी।

0: ये थी मिताली सिंह की आवाज और रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।
1: ना जवानी नल चल दी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगो वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनेंगे यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विधाता फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और किशोर कुमार का गाया हुआ पिघलता आसमान फिल्म का गाना। इन दीवार के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने गाया है, वर्मा मलिक ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है राज तिलक।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, संकोच फिल्म का नाम है और आवाज है सुलक्षणा पंडित की।

गुलशन बावरा का लिखा यह गीत आपने सुना रफू चक्कर फिल्म से, कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थीं। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में घुंघरू फिल्म का ये गाना।

लीजिए सुनिए इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ कलाकार फिल्म का गाना। आवाजें सुरेश वाडकर और साधना सरगम की हैं।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाजें। फिल्म का नाम है पाप।

नमस्कार, शुभ दोपहर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज की इबारत पढ़कर बहुत सारे संदेश आए हैं। अगर आपने अभी ये इबारत नहीं पढ़ी है तो फेसबुक पेज पर हमने जो इबारत पोस्ट की है वो आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। रिमझिम में भीगी समंदर की लहरें, उठे झूमके और घड़ी भर को ठहरे। बड़ी दूर से देख आवाज देती, कभी पांव में डोर बनकर लिपटती। किनारे पे आए, मिले लौट जाए, कभी रेत पर लिखे नामों को छूकर। उधर जा निकलती जहां पत्थरों पर धड़कते हैं दो तिल एक ही ताल पर। गले उनसे मिलकर, उन्हें प्यार देकर, कोई गीत गाती और फिर लौट जाती। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द हैं आज के और उन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। बहुत सारे संदेशों में इन शब्दों का भी जिक्र है और गीतों की भी बात हुई है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गाने लिस्ट से मैच हो रहे हैं आपकी लिस्ट से। इस मैचिंग के लिए बहुत सारे संदेशों का से गुजरना होगा। और एक संदेश है, कहीं समंदर की लहरों की बातें हैं, कहीं समंदर के कुछ जो एक व्यंजनात्मक रूप से लिखी गई समंदर के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। समंदर को जीवन से भी जोड़कर देखा गया है और समंदर के किनारे टहलने की भी कई अनुभव साझा किए गए हैं। बहरहाल ये जो संदेश है इसमें लहरों को सुरीला सफर से सजाया गया है। काव्यात्मक रूप से इस बारे में बात की गई है। समंदर की लहरें केवल पानी का उठना और गिरना नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट लय और ऊर्जा का नृत्य हैं। लहरों की अनवरत ध्वनि और निरंतरता किसी ध्यान जैसी अनुभूति देती है। लहरों में एक अद्भुत विरोधाभास होता है। ये जितनी प्रचंड और शक्तिशाली हो सकती हैं उतनी ही कोमल और शांत भी। जीवन में ठहराव नहीं निरंतरता का प्रतीक है ये लहरें। समुद्र का ये अनुशासन ही उसकी असली सुंदरता है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में कहा गया है कि शाद और अवसाद में अवसर दर्शाती और साजे दिलों की हसरतों तरंगों भरी दास्ता बयान करती इश्किया इबारत निसंदेह प्रेमी युगल के प्रेम विवाह के लिए संजीवनी स्वरूप है। लहरों के राजहंस रूपी प्रेमी किनारे रेत पर इंतजार करती प्रेयसी को लुभाने में कामयाब होगी। इश्किया लबोलुआब से सराबोर संगीत में सुरीला सफर का इंतजार रहेगा। तो भाई इंतजार खत्म हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप अपने रेडियो के करीब ही हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो। एक और संदेश में कहा है कि समंदर की लहरों के माध्यम से प्रेमियों के दिलों के धड़कने और उनके आपसी जुड़ाव को दर्शाया गया है। समुंदर की लहरों को इस तरह पेश किया गया है जैसे वे इंसानों की तरह आवाज देती हैं, प्यार करती हैं और गीत गाती हैं। यादों की अमिटता, रेत पर लिखे नामों को लहरों का छूना उस प्रेम और यादों की पवित्रता को दर्शाता है जिन्हें समंदर रूपी प्रकृति सहेज कर रखती है। लहरों का किनारे पर आना, मिलना और फिर लौट जाना जीवन और प्रेम में आने वाले मिलन और वियोग के प्राकृतिक चक्र है, चक्र का प्रतीक है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में शब्दों के का जिक्र किया गया है, उन शब्दों का। माय प्लेलिस्ट इज लॉन्गर टुडे, होपिंग टू हैव मोर चांसेस। छूकर मेरे मन को रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा। इस तरह के कुछ गीत इन्होंने साझा किए हैं। एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कहीं से ये गजल हमें भेजी है, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो। और बहुत खूबसूरत गजल है, हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर, हम सबको लहरों के साथ कहीं बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहां हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहां कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी आता होगा तो भी। क्या बात है भाई, ये बात तो है ही कि गीत संगीत और जब मनचाह साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं।

तो भाई ये कुछ गीत हैं जो हमने आपकी पसंद से चुने और उनके थोड़े थोड़े अंश आपको सुनवा दिए। हमने ये गीत चुना है और इसे भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है। लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। एक तो आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज़ में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम का सुना था।

सुन के मत

बड़ा खूबसूरत तराना छेड़ देता है ये गीत। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं का आया, बहुत बहुत शुक्रिया। काला बाजार, देवानंद, वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं वो तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की भारत में एक अजीब सी तड़प भी है और अपनापन भी, लहरों के माध्यम से प्रेम मिलन भी रहे और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव होता है। लहरों का उठना, ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है।

और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं, यादों से उठती हैं। वे जब भी दिल के किनारे आती हैं, अपने दूर गए साथी से मिला जाती हैं, उनकी कई यादें याद दिलाकर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफर के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है, सांसों के तार पर देश की सुरीली धड़कन के ताल पर जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकराती हैं, तूफान उठाती हैं। रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं। कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं। चलिए इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहाँ से सीपियाँ इकट्ठी की हैं? अगर ऐसा किया हो तो हमें ज़रूर बताएं। और कहाँ गए हैं, अलग अलग तटों पर, हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन गा रहा है और संगीत किनका है।

तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, बहुत रोमांच होता है, ऐसी अनोखी दुनिया होती है, ये हमारे एक श्रोता ने बताया है उस सवाल के जवाब में जो हमने पूछा था कि समुद्र के किनारे आप कहाँ गए हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि मुंबई गए हैं। बाकी जवाबों का भी इंतज़ार हो रहा है, ज़रूर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और जल्दी से बताइए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आपने जैसे ही रिमझिम के तराने छेड़े वैसे ही हमारे यहाँ भी रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वाह क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं हम तो दीघा पश्चिम बंगाल गए थे। अब दूसरे सवाल की बारी, वैजयंती माला फिल्म मधुमती, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, ये जो गाना भी आपने सुना सलील चौधरी का संगीत निर्देशन था, ये जवाब भी आ गया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया है कि ना बाबा मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी ना जल महल और पानी से दूर ही रहती हूँ। ओहो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पानी का डर जो है वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहना के लिए मजबूर कर देता है। आप ये बताइए कि समुद्र के किनारे बहने वाली हवाओं का भी एक बड़ा ख़ास अहम भूमिका होती है, तो क्या कभी उन हवाओं के साथ आपकी कुछ मुलाकात हुई है, जो तेज़ तेज़ हवाएं बहती हैं बारिश के समय में, अगर याद हो तो वो ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी जिन श्रोताओं ने नहीं बताया है कि वो किस समुद्र के किनारे टहले हैं या क्या बनाया है उन्होंने, जो घरौंदे बनते हैं उन घरौंदों को कई बार बच्चे भी बनाते हैं, और आजकल तो बहुत सुंदर सा सेट भी मिलता है बच्चों के उन घरौंदों को बनाने वाला, वो अगर सेट किसी बच्चे को गिफ्ट किया हो तो ये भी बताएं। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनने के लिए आपको बताना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है। संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक और रिमझिम का गाना याद दिला दिया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लता मंगेशकर की आवाज़। वैसे तो रिमझिम शब्द वाला पहला सुना गीत मराठी है। रिमझिम पाउस पड़े सारखा, यमुनेला हुपूर चढ़े, पाणीच पाणी चहुड़के चहुकड़े। वाह क्या बात है। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि रिमझिम के तराने की गीत मालाएं बुन रहे हैं और सभी मुखड़े उम्मीद के अनुसार मंजिल ढूंढता गाना शुरू हुआ और काला बाजार पर रुक गया। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर की अपनी शांत गुफाएं हैं, गहरी शांत और एकांत, यद्यपि लहरों में उग्रता हो लेकिन उसके नीचे कोई शांति नहीं है। शायद कोई टाइपो एरर हुई है, अशांति लिखते हुए इन्होंने अशांति लिखना चाहा होगा। एक और श्रोता ने कहा है कि वैसे हम अपनी कुछ दिन पहले की एक बात बताते हैं आपके साथ साथ सभी हंसेंगे सुनकर, तो हुआ यूं कि हमारी बेटी ने कुछ पंक्ति लिखकर अपनी एक पोस्ट डाली स्टेटस पर समुद्र के किनारे की पिक के साथ, तो हमने उसे लाइक किया और लिखा कि हम लिखते तो कुछ ऐसा लिखते, तो जवाब में उसने लिखा आप दिल से सोचती हैं और हम दिमाग से, फिर हमने लिखा अरे नहीं हम विविध भारती सुनते हैं ना, तो उसका रिप्लाई सारा क्रेडिट मम्मी ने विविध भारती को दे दिया। फिर उसने ये बात सब दोस्तों को बताई, सब इतना हंसे ऑफिस में, तो सोचो एक छोटी सी बात ने कितनों को हंसाया। बस यही तो हम चाहते हैं, सब खूब हंसे वरना परेशानियां तो सबके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि जीवन दर्शन समंदर की भांति ही गहरा ही नहीं अपितु रहस्यमय भी है, भले ही हम उसके अंदर अपने कौशल विकास से केबल बिछा कर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है, क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है, और वो सवाल ये है कि इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं, तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए, एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा? ये जो हमारे साथियों ने बताया है समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रही है कि हम तो समुद्र कनाडा में इन्होंने देखा था कई बार और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नज़ारे को देख पाते, पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहां चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी जाना हुआ, कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहां जाया करते हैं, दुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था। क्या बात है, मुंबई के जुहू बीच दो तीन बार, अक्सा बीच और गोराई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने, द्वारकाधीश और सोम

नाथ गया हूँ समुंदर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहां पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट गोते खाने लगी। तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर 2-3 बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है, मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूं। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया। थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथ ही अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज धूप है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। चलिए जल्दी हम दुआ करते हैं बारिश आएगी। एक और श्रोता कह रहे हैं कि वीबीएस सर्विस मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया, ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सूंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है। चलिए अब इसी बात पर अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

आवाज पर ये गाना तो हो गया और इसके साथ ही बहुत सारी आवाजें, भावनाएं आवाज बनकर हम तक पहुंच गई हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूं तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूं, समुद्र में जाना तो दूर की बात है। वैसे हमारे साथियों ने ये जरूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास की का ये दोहा हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही हैं कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा, क्योंकि समंदर के काफी नजदीक रहती हूँ। अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं। लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएं जब आप समंदर के किनारे हों। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विजाग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी केरला के कोवलम बीच की सैर करके आई हूं, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा, कि बचपन इनका मुंबई में ही गुजरा था, समुद्र से गहरा लगाव है। जब भी हम मुंबई आते हैं तो जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या अन्य बीचेस में जरूर जाते हैं। धर्मपत्नी जब बच्चों के साथ होती हैं तो मैं चुपके से हर बार रेत पर दिल का शेप बनाता हूं, धर्मपत्नी का नाम लिखकर आई लव यू भी लिखता हूं और सबको बुलाता हूं, तो धर्मपत्नी और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा तोहफा होता है और वहां का वीडियो भी सेव करके रखता हूं। हां, हम यही बात कहने वाले थे कि ऐसे नजारों की तो फोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुशनसीब हूँ जो समुंदर के किनारे रहती हूँ। मेरा बेटा रोज शाम को खिलौने लेकर रेती में खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियाँ इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियाँ मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है और इसलिए समंदर को साफ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला। बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मजे लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नजारा वीडियो में आज तक कैद है, जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम गीत फिल्म का गाना अनीता राज का जिक्र किया, इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। ये दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगे उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल। क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक सैर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप खराब हो गया। वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम जरूर आए। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूँ, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज

2.5 घंटे का सफर पूरा किया ये बताया है। नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से। दुआ कीजिए जी, बिल्कुल हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुंचे। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुंचे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहाँ तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नजदीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को, क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है।

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई, वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना नायिका जया भादुड़ी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और इनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे, हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था, एक तीन चार लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूँ। एक और श्रोता ने एक दोहा साझा किया है समुद्र तट के वर्णन के बारे में, रामचरितमानस का दोहा है, बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहां समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं वहां आज भी दो दिल एक ही ताल पर धड़कते हैं। मानो कह रही हूं कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की भारत समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुए, धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाएं, और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं, कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं। लहरें जिंदगी के सफर में बहुत कुछ सिखा जाती हैं, हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना ही इस बहते हुए जीवन की बाजी है, क्या बात है। और अब ये गीत सुनिए और बताइए स्वर किनका है,

लता जी और भूपेंद्र सिंह, ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज़ ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एस डी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहीं, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज दरिया समंदर नदियों की उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा, बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूँ, थकान मिट जाती है। शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है, जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है, और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं, जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है, यथार्थ में तो वो सागर का अंश मात्र ही हैं। काफी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है कि आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहां व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफ़र तय किया, सुरीला सफ़र। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम। तो दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज में फिल्म दम लगा के हईशा से।

अनु मलिक का संगीत वरुण ग्रोवर के लिखे बोल कुमार सानू की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म दम लगा के हैशा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मनमर्जियां से, आवाज है हर्षदीप कौर और जाजम शर्मा की।

अमित त्रिवेदी का संगीत, शैली के लिखे बोल, हर्षदीप कौर और जाज़िम शर्मा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मरमर्जिया से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारतवर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद कल वे अनंतपुरम जाएंगी, जहां आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री गौतम टिटवाल और सांसद रोड बलनागर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ पूजन और पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का आज समापन हो रहा है, जिसमें अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जिला स्तरीय समारोहों में सांसद गण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डेलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीड़ी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को कक्षा के अनुसार 1,000 रूपए से लेकर 25,000 रूपए तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की

शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब शिष्यवृत्ति की दरें हर साल मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होंगी और जुलाई में छात्रावास आश्रम शुरू होने से पहले लागू होंगी। नई दरों के अनुसार छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले बालक विद्यार्थियों को 1720 रुपये प्रतिमाह और बालिका विद्यार्थियों को 1710 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाएगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर के निर्देशन में रोजगार मेले का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में होगा। कटनी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल ईवीएम वेयरहाउस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। सेफ क्लिक अभियान के तहत आगरमालवा जिले के कल 6वें दिन जिला पुलिस द्वारा बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में व्यापक साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शिवपुरी जिले में सहकारिता और जागरूकता तथा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कल जिला सहकारी संघ कार्यालय में आयोजित हुआ और खंडवा वन मंडल की गुंडी रेंज के ग्राम आमा कुचरी में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 105 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं और कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन-देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल है। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जन प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
4: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
5: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है। इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हम

0: भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता के आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
0: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ, एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

इस गीत के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: Haley.
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना,
1: हाँ,
2: ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है, बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही है, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे,
3: बस इंतजार करना जरूरी है क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
3: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आमतौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है, पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
1: हाँ,
3: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
1: एक,
3: के।
1: एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
3: हाँ। तो ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते
1: अरे
3: हैं।
1: कुछ बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
3: हाँ,
1: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और पता चला खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
3: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है,
1: हाँ,
3: सिक्का निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना,
1: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते,
3: माता पिता पानी पानी हो जाते, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल देते हैं, सही बात है। वैसे ये सब जो बातें होती है ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
3: तो मजा आ जाता है,
1: मजा आ जाता है।
3: सुनते हैं गीत।
4: अरे अरे ए,

चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तू साथी चल। एक तो ये मौसम है।

0: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
1: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली है अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
0: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को, यानी बच्चियों को, ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
1: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
0: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
1: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
0: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
1: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
0: अब सरल भाषा बच्चों के लिए, यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
1: क्या होगी, ये बहुत अच्छी पहल है
0: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर, बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
1: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
0: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
0: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
1: और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
0: या चिड़िया ने छू लिया।
1: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बच्चों, बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
0: ये गंदी।
1: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
0: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी।
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे, तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में
1: जी। राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह है उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा उसके अंदर जो शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती है,
0: प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी होता है,
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं,
1: तुम भी समय से जाया करो ट्यूशन स्कूल।
0: तो उसने कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाए ही नहीं। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी समझ।
0: बापरे।
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा। मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है।
0: हाँ तो मतलब इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है, अभी 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को पोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे जोड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे।
0: हाँ, हाँ, और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है।
1: हाँ
0: ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगता ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचाकर रखता था, छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीखकर सबको चौंका देते हैं, उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा यह आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है तो कभी हंसी भी आ जाती है तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार VCR के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने ये काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम नहीं लेती
0: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी ओ मेरी ओ

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: दिया। ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसे लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना पंचेस और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारते होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: बना जी। तो भाई ये कुछ
1: यानी उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे वो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोद में दीजिए, ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते हैं,
1: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर आते हैं वो लगा दे और कहे कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
1: बहुत होती
0: तो
1: है।
0: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं बच्चे,
0: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं।
1: तो उसके ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे। उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए।
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है। नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: गाने में है।
0: हाँ।

0: कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पांस नहीं दे रहा था, वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से, खैर जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे ना। तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: ये नहीं, परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो भाई वो बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है।

0: समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का एकल परिवार। और सच मुझे ना पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। तो पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, एंजॉयिंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माय चाइल्डहुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है
0: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है
1: जी।
0: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
1: है। पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
0: चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है,
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।

0: देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी, तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं।
1: पोल खोल
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, मतलब नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं।
0: सब पोल खोल दी
1: अंदर से पापा ने सुना, अरे मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएं कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया।
0: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा,
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसकी बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने मान लीजिए, एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गए, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और 2-4 किशमिश बीनकर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण है कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा ले, और घर वालों ने किसी ने देख लिया
0: तो पानी पानी हो गए।
1: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए हैं ना, तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
1: सचमुच। और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
0: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
3: बेखबर, बेखबर।
4: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता

0: सिंह की ओर से। आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
0: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
1: हाँ।
0: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्मी दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
1: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
0: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का क्रमवार आप बताए और रचना प्रक्रिया बताए।
1: मुल्क का गाना आप सुनाए, पिया समाए
0: जी,
1: बहुत अच्छा गाना,
0: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
1: हाँ,
0: कव्वाली है।
1: यस यस,
0: कव्वाली के शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
1: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
0: जी, बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
1: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
0: जी,
1: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी है जो याद की जाएंगी,
0: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
1: जिक्र किया जाए,
0: दर्ज होती है आज के समय।
1: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
0: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चलिए, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
1: जी हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: आर्टिकल 15 से,
0: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
1: उस गाने की कहानी ये है कि
0: कोई दिलचस्प बात हो।
1: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
0: पड़ा है, इजाजत फिल्म
1: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
0: अरे क्या बात है।
1: हाँ, उल्टा मतलब के
0: तो, सामान देना है।
1: हाँ, वो कह रहे लौटा दो।
0: हाँ,
1: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
0: हाँ,
1: ठीक है,
0: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर। हाँ,
1: तो उसमें जो गाना है।
0: हाँ,
1: वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मूमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
1: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो।
0: हाँ,
1: लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी
0: जी।
1: हाँ,
0: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
1: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना, आ भी जाना, इंतजारी है तेरी।
0: क्या बात है, वाह।
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
0: वाह
1: वाह, बहुत सुंदर, है ना। तो अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है, और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं। तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
0: बिल्कुल,
1: है ना, कोई नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना, और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट पिया समय, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने के बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: ये भी गाना लिख दो जल्दी।
1: हाँ, और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे।
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि

0: गाना किधर है।
1: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है। हाँ। कि वो गाना देकर चले गए हैं।
0: हाँ। अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर।
1: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
0: हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए, ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत, मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
1: बेहतरीन फिल्म थी,
0: डिफिकल्ट सिचुएशन थी। तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है, सात रंग हैं सातों पिया के,
1: सात रंग हैं सातों पिया के।
0: हाँ, सात रंग होते हैं
1: जी।
0: मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है, है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
1: खुदा है,
0: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लगा चुनरी में दाग और फलाना, वो
1: छुपाऊं कैसे,
0: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, दो अर्थी।
0: हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
1: रंग दिखाई।
0: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके भाई में उजली,
1: वा, वा।
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है, ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपके फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना। इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं,
1: मतलब क्योंकि आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंच गए,
0: दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको, तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे, मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा, जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके, लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर।
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था। फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी। मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए, और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई। उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी। सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को। तो उसमें गाना था वो, के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर।
0: जी जी जी।
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था, जाने जा
0: जी,
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
0: जी जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
1: आई बेखबर
0: सुनते हैं। हाँ। ये गाना

0: रूप कुमार राठौर के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौर साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौर साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं, और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है, है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौर साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी, जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी, जी।
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने वो गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी, जी,
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी, जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौर साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज हैं।
1: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगाने
0: जी,
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी, जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
1: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था
0: जी, जी।
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
0: अच्छा।
1: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी फिल्म थी, अक्षय कुमार
0: जी, जी, जी।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
0: वहाँ तनवीर खान भी के।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं वही आ रहा हूँ तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
0: जी।
1: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
0: जी।
1: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
0: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
1: सर के नीचे तेरी हथेली है।
0: ओ, क्या बात है।
1: ठीक है। तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
0: ओ, क्या बात है।
1: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे
0: जी जी।
1: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
0: जी।
1: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
0: जी।
1: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील सिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
0: क्या बात है।
1: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
0: ओ, अच्छा, क्या बात है भाई। अच्छी दिलचस्प कहानी।
1: हाँ, मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का।
0: हाँ,
1: लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील सिफाई साहब की गजल से लिया गया, ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
0: जी,
1: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया, वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
0: जी।
1: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
0: कि मुझे,
1: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया। हाँ तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
0: क्या बात,
1: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
0: बहुत
1: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
0: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुन रहा है?
1: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना, मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज्में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई है, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे कहते जाते, बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है, मैंने एक नया रास्ता निकाला पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे, मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं, तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया।
0: जी, जी।
1: वहाँ पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब हैं, गुलजार साहब हैं, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है।
0: जी।
1: और किस तरह से मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
0: क्या बात है।
1: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो हाँ, बहुत शुक्रिया
0: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है। मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहाँ अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव है, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। आपके अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
1: मैं यही कहूँगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
0: कुछ शायर अंदाज में आप एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
1: जी,
0: कोई अशार।
1: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके दो तीन शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
0: क्या बात है।
1: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
0: क्या बात है।
1: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
0: वाह वाह वाह।
1: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो आप आगे बढ़े। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
0: क्या बात है।
1: सांपों को मैंने रहने दिया
0: उनके हाल पर।
1: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
0: वाह वाह वाह।
1: ठीक है, मैंने उससे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना
0: जी,
1: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
0: क्या बात है। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह।
1: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
0: जी।
1: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
0: क्या बात है। वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
1: ममता जी,
2: जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। भारत में ऑपरेशन अमेस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। राष्ट्रपति

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार, आज आकाशवाणी सागर की तरफ से काव्य गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। मैं सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। इसमें शिरकत कर रहे हैं हमारे साथ कवि हरिओम सेन, शायरा मीता कन्नौजिया सिम्मी जी और मैं अनिकेत दुबे। इस कार्यक्रम का आयोजन दो चरणों में होगा, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले चरण की। पहले चरण में

0: मेरा दिलों पर राज करता हूँ कि करता हूँ अर्पण शब्द उन्हें, कि करता हूँ अर्पण शब्द उन्हें, हिंद जिनकी आन वान शान था, हथेलियों पर रख के प्राण, कि हथेलियों पर रख के प्राण किया खुद को कुर्बान था, कि रक्त से रंग दिया था धरा को, आतंकियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था, कि जय हिंद का नारा सदा लिखा था भारतीयों के दिल और दीवार पर, अरे फांसी चढ़ा दिया था उनको, कि अरे फांसी चढ़ा दिया था उनको, जिनके दिलों में आजाद हिंदुस्तान था और सांस के अंतिम कण कण में भी भारत देश महान था, भारत देश महान था, कि जा है भारत, कि जा है भारत, माँ है भारत, आन है भारत, मान है भारत, हम सबका स्वाभिमान है भारत, कि रामकृष्ण की जन्मभूमि है, कि रामकृष्ण की जन्मभूमि है, गौतम बुद्ध की तपोभूमि है, महाभारत की युद्ध भूमि है, हल्दी घाटी सी शुद्ध भूमि है, कि तक्षशिला सा ज्ञान यहाँ है, शतरंज सा हमने खेल दिया है, कि सभ्यताओं का जन्मदाता है, संस्कारों को यह बताता है, शून्य का अवधारक है, कि शून्य का अवधारक है, पाई का प्रचारक है, दुनिया का विश्व गुरु है, कि दुनिया का विश्व गुरु है, पृथ्वी पर हर स्वर्ग यही है, अरे आजाद भगत सुभाष का सपना आजाद हिंदुस्तान है भारत, भारत भारत भारत बस देश, हम सबका संसार है भारत, हम सबका संसार भारत, इस माटी ने क्या कुछ नहीं दिया, कि इस माटी ने सिबराया जैसा वीर दिया, उसने ही अफजल का सीना चीर दिया, जहां वचन निभाने को है राम मन को जाते हैं, कि जहां वचन निभाने को है राम मन को जाते हैं, वहीं वचन निभाने की खातिर रणधीर बन शीश के लड़ जाते हैं, जहां सुहाग बचाने को सावित्री, कि जहां सुहाग बचाने को सावित्री यमराज से भिड़ जाती है, वहीं राजवंश की रक्षा में पन्ना पुत्र बलि चढ़ाती है, और जहां स्वाभिमान की खातिर पद्मिनी, कि जहां स्वाभिमान की खातिर पद्मिनी जौहर कर जाती है, वहीं देश रक्षा की खातिर मर्दानी गोरों से लड़ जाती है, मर्दानी गोरों से लड़ जाती है, कि सर कटे टंगी है फांसियां, तिरंगा कभी पर झुका नहीं, तूफान रुके हैं लश्कर, पर राष्ट्रगान कभी रुका नहीं, तू सारथी हिंदुस्तान का है कर्म को अंजाम दे, कि तू सारथी हिंदुस्तान का है कर्म को अंजाम दे, राह है सही अगर, कि राह है सही अगर कला को ना विराम दे, और उड़ान तेरी हुक्मरा का, कि उड़ान तेरी हुक्मरा का कोई पिका फरमान नहीं है, तो सूरवीरों का शोर कोई अंधकार का फरमान नहीं।
1: तो प्रथम चरण में आपने पहली प्रस्तुति सुनी हरिओम सेन जी की। अब मैं दूसरी प्रस्तुति के लिए मीता कन्नौजिया जी शिम्मी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना काव्य पाठ पढ़ें।
2: नमस्कार, मैं मीता कन्नौजिया, मैं आपके सामने कुछ चार मिश्रे पेश करती हूँ। मिजाज मेरे थोड़े सख्त दिखाई देंगे, मिजाज मेरे थोड़े सख्त दिखाई देंगे, सामने झुके कई तख्त दिखाई देंगे, जब सब किनारा कर लें तो बताना, जब सब किनारा कर लें तो बताना, हम सिर्फ बुरे वक्त में दिखाई देंगे। और इसी के साथ मैं एक गज़ल पेश करती हूँ। मोहब्बत की रस्में निभाने लगी हूँ, मोहब्बत की रस्में निभाने लगी हूँ, जमाने को अपना बनाने लगी हूँ, उदासी में छोड़ा था मुझको किसी ने, उदासी में छोड़ा था मुझको किसी ने, कि मैं आज सजने सजाने लगी हूँ, भुलाना था जो कुछ नहीं भूलती मैं, भुलाना था जो कुछ नहीं भूलती मैं, उसी छोड़ सब कुछ भुलाने लगी हूँ, समझ जब से आया सभी कुछ है दौलत, समझ जब से आया सभी कुछ है दौलत, तभी से मैं दौलत कमाने लगी हूँ, हकीकत मोहब्बत की जब से है जानी, हकीकत मोहब्बत की जब से है जानी, मोहब्बत से दामन बचाने लगी हूँ, डराती है अक्सर मेरी उम्र मुझको, डराती है अक्सर मेरी उम्र मुझको, कि बचपन को अपने बुलाने लगी हूँ, सिमी बोलकर सच फकत इस जहाँ को, सिमी बोलकर सच फकत इस जहाँ को, हूँ मासूम फिर भी डराने लगी हूँ। चार मिश्रे मैं और पेश करती हूँ। मैं तुम्हारी भीड़ का हिस्सा ही नहीं, मैं तुम्हारी भीड़ का हिस्सा ही नहीं, मुझे सदा अकेले ही पाओगे, मैं तुम्हारी भीड़ का हिस्सा ही नहीं, मुझे सदा अकेले ही पाओगे, मेरा विश्वास से विश्वास उठ गया है, मेरा विश्वास से विश्वास उठ गया है, मुझे सिर्फ मंदिरों में ही पाओगे, बरस बरस कर थक गए अजीब बादल हो, बरस बरस कर थक गए अजीब बादल हो, आँखों को चुभ रहे हो, आँखों को चुभ रहे हो अजीब काजल हो, एक पल को दूर रहना तुम्हें गवारा ना था, एक पल को दूर रहना तुम्हें गवारा ना था, एक मुद्दत बाद मिल रहे हो, अजीब पागल हो। अभी तक संचालन कर रहे थे अनिकेत दुबे जी, तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अपना काव्य पाठ शुरू करें।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अनिकेत दुबे अपने कुछ भाव कुछ विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ज्ञान की देवी माँ शारदा के चरणों में दो पंक्तियों के माध्यम से प्रणाम करना चाहूंगा। श्वेत हंस बाहन पे श्वेत कमलासन पे हाथ बीणा लेकर बिहार करें शारदा। श्वेत हंस बाहन पे श्वेत कमलासन पे हाथ बीणा लेकर बिहार करें शारदा। बुद्धि ज्ञान दायिनी है ब्रह्मा अर्धांगिनी, ज्ञान देके जगत उद्धार करें शारदा। ज्ञान देके जगत उद्धार करें शारदा। स्वर्ग रसा और धारा तीन लोक इनसे चले, ममता से तीनों का ही काम करें शारदा। शब्दों में सामर्थ्य भरे नम्रता से पूर्ण करें, शीश नवा तुम्हें हम प्रणाम करें शारदा। शीश नवा तुम्हें

0: सोच रहा हूं, सोच रहा हूं, एक अरसे से लफ्ज अभी तक खोज रहा हूं। बैठा हूं कोरा कागज लेकर, मापर लिखने का सोच रहा हूं, सोच रहा हूं, एक अरसे से लफ्ज अभी तक खोज रहा हूं। चाहत लिखूं, राहत लिखूं, या स्वर्ग सी सजावट लिखूं। चाहत लिखूं, राहत लिखूं, या स्वर्ग सी सजावट लिखूं। सुबह की ठंडी हवा लिखूं, या सब मर्जों की दवा लिखूं। धन्य धरा सा धैर्य लिखूं, धन्य धरा सा धैर्य लिखूं, या दुर्गा सा शौर्य लिखूं। सुरसरी सी पावन सरिता लिखूं, या स्नेह की कोई कविता लिखूं। सुरसरी सी पावन सरिता लिखूं, या स्नेह की कोई कविता लिखूं। सवाल लिखूं, जवाब लिखूं, या मीठा सा कोई ख्वाब लिखूं। खुशियों का आसमां लिखूं, या सबकी जगह पर बस माँ लिखूं, सबकी जगह पर बस माँ लिखूं। अब चूंकि बात तो माँ के प्रेम की हुई है, तो हमारे साहित्य में शुरू से ही प्रेम का जिक्र भी बहुत हुआ है। मैं माँ उर्मिला और लक्ष्मण जी के संवाद पर, जब लक्ष्मण जी वनवास से लौटकर आते हैं, तो वो बहुत ही सुंदर उनका दोनों का संवाद रहता है, माँ उर्मिला का और लक्ष्मण जी का। तो मैं उस पर मैंने दो पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे उर्मी तुम्हारे नयनों में, हे उर्मी तुम्हारे नयनों में जो रुकी रही जल की धारा, उस कारण मैं वन और रण में अपना कर्तव्य निभा पाया। हे उर्मी तुम्हारे नयनों में जो रुकी रही अश्रुधारा, उस कारण मैं वन और रण में अपना कर्तव्य निभा पाया। कह दो हे सिय की अनुजा, कह दो हे सिय की अनुजा, कैसे आभार व्यक्त करूं, कहो प्रिय तुमको कैसे विरहा पीड़ा से मुक्त करूं। कह दो हे सिय की अनुजा, कैसे आभार व्यक्त करूं, कहो प्रिय तुमको कैसे विरहा पीड़ा से मुक्त करूं। मैंने वन में मैदानों में, तुमने महलों के कोनों में, मैंने वन में मैदानों में, तुमने महलों के कोनों में, हो असरों से या अंतर मन से, युद्ध लड़ा है दोनों ने, युद्ध लड़ा है दोनों ने। इतिहास यदि मुझको देवी, राम काज सहकार कहेगा। इतिहास यदि मुझको देवी, राम काज सहकार कहेगा। तो तुमको इस रामानुज का कोटि कोटि आभार कहेगा, तो तुमको इस रामानुज का कोटि कोटि आभार कहेगा। आपने अभी तक कार्यक्रम के पहले चरण में हमारे कवियों की बहुत खूबसूरत रचनाएं सुनी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चरण की शुरुआत करूंगा और चाहूंगा श्री हरिओम सेन जी आगे की प्रस्तुति दें।
1: कि राग को राह मिल जाए, कि राग को राह मिल जाए तो क्या कहना, शाम को श्याम मिल जाए तो क्या कहना, और मुझे मेरे शंकर मिल जाए, कि मुझे मेरे शंकर मिल जाए तो मुझे संसार का क्या करना। कि साथ में हो तुम मेरे, कि साथ में हो तुम मेरे, सांस में हो तुम मेरे, ऐसा लगता है हर एहसास में हो तुम मेरे, हर तलाश में हो तुम मेरे, हर तलाश में हो तुम मेरे, हर लम्हों की बात पर हो तुम मेरे, कैलाश में हो या पाताल में, कि कैलाश में हो या पाताल में, जहाँ भी हो तुम मेरे। जटा में गंगा वास हो, कि जटा में गंगा वास हो, या गले में वैशीला नाग हो, हर भोले के भोले नाथ हो तुम मेरे, हर भोले के भोले नाथ हो तुम मेरे। हो किसी के स्वार्थ में, कि हो किसी के स्वार्थ में, या हर किसी के विश्वास में, इस विश्व के विश्वनाथ हो तुम मेरे। तांडव सा तेरा नृत्य हो, कि तांडव सा तेरा नृत्य हो, या विघ्न हर्ता तेरा पुत्र हो, दया को दयावान हो, कि दया को दयावान हो, कृपा को कृपा निधान हो, तुम्हारी परिक्रमा ही काफ़ी है, कि तुम्हारी परिक्रमा ही काफ़ी है, तुम ही सारे धाम हो, तुम ही चारों धाम हो, कि तेरा आदि है ना अंत है, कि तेरा आदि है ना अंत है, हे कालों के काल तुम हो मेरे, तुम ही से गंगा आज है, कि तुम ही से गंगा आज है, तुम ही से तीनों काल हैं, तुम ही से ये संसार है, तुम ही से मेरा नाम है, हे ओमकारेश्वर तुम हो मेरे, हे ओमकारेश्वर तुम हो मेरे। और एक और प्रस्तुत करता हूँ अपनी कविता। जब कहा जाता है कि यह पीढ़ी सही नहीं जा रही, कि कमी हुई जो दीवानों की, कि कमी हुई जो दीवानों की, तो हम तेरे दीदारे हो जाएंगे, हे भारत माँ, कि कमी हुई जो दीवानों की, तो हम तेरे दीदारे हो जाएंगे, कमी हुई जो मस्तानों की, कि कमी हुई जो मस्तानों की, तो हम तेरे अफसाने हो जाएंगे, कि नज़म लिखूंगा लटलाली, कि नज़म लिखूंगा लटलाली, और चांद चकोर का इजहार लिखूंगा, धड़कन भारत माँ तेरे नाम सदा, कि धड़कन भारत माँ तेरे नाम सदा, और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर मेरी माँ को दर्द हुआ तो, कि भारत माँ को दर्द हुआ तो, ना चीखूंगा चिल्लाऊंगा, पूरे विश्व में घूम घूम, कि पूरे विश्व में घूम घूम मैं शिव तांडव दोहराऊंगा, महाराणा प्रताप की भांति, कि महाराणा प्रताप की भांति हल्दी घाटी दोहराऊंगा, कि हथियार बना के मशाल को अपनी, जय हिंद चिल्लाऊंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर।

0: जय जय हिंदुस्तान गाऊंगा, जय जय हिंदुस्तान गाऊंगा। धन्यवाद।
1: बहुत ही सुंदर और जोश से भरी हुई आपने रचना सुनी श्री हरिओम सेन जी से। अब मैं आग्रह करूंगा मीता कन्नौजिया सिमी जी से कि आप अपना प्रस्तुति दें।
2: मेरे शिव, शिव की भांति तुम्हारे कई रूप हैं, शिव की भांति तुम्हारे कई रूप हैं, और हर रूप में तुम मुझे प्रिय हो। कभी क्रोध में तुम काल भैरव बन जाते हो, ध्यान में डूबते हो तो योगी बन जाते हो, विश्व रूपी पीड़ा को पीकर नीलकंठ बन जाते हो, करुणा में तुम भोले बन जाते हो, रूप में तुम चंद्रशेखर बन जाते हो। शांत करना हो काली को तब तुम पुरुष अहम से परे शब भी बन जाते हो, और मुझे प्राणों से भी अत्यंत प्रिय तुम मेरे शिव बन जाते हो। इसके बाद मैं चार लाइनें और पेश करती हूँ। जख्म यूं ही दिखाया नहीं जाता, जख्म यूं ही दिखाया नहीं जाता, हाले दिल ऐसे सुनाया नहीं जाता, जख्म यूं ही दिखाया नहीं जाता, हाले दिल ऐसे सुनाया नहीं जाता। यूं तो मिलते हैं लाखों ही राहों में, यूं तो मिलते हैं लाखों ही राहों में, मगर दोस्त सभी को बनाया नहीं जाता। इसके बाद मैं एक गज़ल पेश करती हूँ। आईने की हूँ सादगी की तरह, आईने की हूँ सादगी की तरह, रंग सारे हैं जिंदगी की तरह, एक धागे की जिंदगी की तरह, एक धागे की जिंदगी की तरह, रिश्ते होते हैं शायरी की तरह, रोज़ जलती हूँ मोम के जैसी, रोज़ जलती हूँ मोम के जैसी, जिस्त मेरी है रोशनी की तरह, कोई तोहमत लगाए क्या मुझ पे, कोई तोहमत लगाए क्या मुझ पे, प्यार करती हूँ बंदगी की तरह, मुझको पागल समझ रही दुनिया, मुझको पागल समझ रही दुनिया, थोड़ी पागल हूँ हर किसी की तरह, ये अधूरी सी दास्तां है मेरी, ये अधूरी सी दास्तां है मेरी, एक नाकाम आशिकी की तरह, अब हूँ जैसे कि भोर का तारा, टिमटिमाती हूँ रोशनी की तरह, जख्म सीने में लाख है सिमी, गुनगुनाती हूँ बांसुरी की तरह। द्वितीय चरण में मैं अनिकेत दुबे जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ।
1: आदरणीय श्रोतागण, प्रेम केवल दो हृदयों का मिलन नहीं है, प्रेम वह भावना है जो मनुष्य को बेहतर बनाती है, उसे निखारती है, उसे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समर्पण करना सिखाती है। प्रेम कभी किसी की मुस्कान में बसता है, कभी किसी के इंतजार में, तो कभी बरसों के मौन त्याग में। आज मैं आपके सामने अपनी कुछ रचनाएं प्रेम से संबंधित प्रस्तुत करूंगा। तो एक रचना है जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए सर्वस्व समर्पण करता है और खुद को नगण्य मानकर प्रेमिका को अनंत मानता है। सुनिएगा।

0: गया के पहुंच कर मैं तुम तक ठहर सा गया।
1: जब प्रेम आत्मा को छूता है तब वह केवल आकर्षण नहीं रहता बल्कि जीवन का आधार बन जाता है। लेकिन प्रेम की एक और सच्चाई है, वो है विरह। कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती और तब मन बार बार उसी शहर, उसी व्यक्ति, उसी एहसास में लौट जाना चाहता है। इसी भाव को व्यक्त करती है मेरी अगली रचना कि मन करता है बता दूं सारे जमाने को, मन करता है बता दूं सारे जमाने को कि मन कहाँ करता है तेरा शहर छोड़कर जाने को। मन करता है बस तेरे पास बस जाने को, नए नए तरीकों से तुझे रिझाने को, गुस्सा दिलाकर तुझे वापस मनाने को, तेरी जुल्फों में गुलाब सजाने को। मन करता है तुझे गले लगाने को कि मन कहाँ करता है तेरा शहर छोड़कर जाने को। मन तो करता है तुझे हंसाने को, तेरा हाथ पकड़कर तुझे घुमाने को, तुझे अपने पास बिठाने को, तेरी बातों को बस सुनते जाने को। मन करता है बस तुझे तकते जाने को कि मन कहाँ करता है तेरा शहर छोड़कर जाने को। मन तो करता है तुझे अपना बनाने को, पूरी दुनिया से तुझे चुराने को, सारे रस्मों रिवाज मिटाने को, तुझे अपनी सांसों में बसाने को। मन करता है बता दूं सारे जमाने को कि मन कहाँ करता है तेरा शहर छोड़कर जाने को। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना आकाशवाणी की तरफ से काव्य गोष्ठी। इसमें साथ थे श्री हरिओम सेन जी, मीता कन्नौजिया सिम्मी जी और मैं अनिकेत दुबे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मेरी पहली कविता का शीर्षक है पर्यावरण। हमारे चारों तरफ फैला है एक आवरण, कहते हैं जिसे हम सब पर्यावरण। जीव जंतु, जल थल मारुस्थल, पेड़ पौधे, बहती नदियां कल कल। मानव स्वार्थों की भेंट चढ़ रहा जो हर क्षण, करें हम उन पेड़ पौधों पशु पक्षियों का संरक्षण। जागे नहीं तो हम खो देंगे आज, जागे नहीं तो हम खो देंगे आज अपनी अगली पीढ़ी का खुशहाल कल। दूसरी कविता है अन्नदाता। अथक परिश्रम जिनका काम, अथक परिश्रम जिनका काम, जीवन जिनका धरती के नाम। जिनसे फसलें लहलहा जाती, खेतों में हरियाली छाती। जिनके त्याग से जीवन चलता, जिनके त्याग से जीवन चलता, जिनसे भोजन थाली में सजता। जो देते हैं सबको अन्न, जो देते हैं सबको अन्न, जीवन है उनका धन। जिनसे बना देश कृषि प्रधान, जिनसे बना देश कृषि प्रधान, किसान है उनका नाम। जिनसे भारत को मिला स्वाभिमान, जिनसे भारत को मिला स्वाभिमान, जो है सारे विश्व की शान। जिनसे भारत को मिला स्वाभिमान, जो है सारे विश्व की शान। जिन पर है हमको अभिमान, जिन पर है हमको अभिमान, गाएं हम उन अन्नदाता का गौरव गान, गाएं हम उन अन्नदाता का गौरव गान। तीसरी कविता है वर्षा। रिमझिम रिमझिम बारिश आए, रिमझिम रिमझिम बारिश आए, बूंदों की फुहारें फैलाए। नदी तालाब झीलें भर जाएं, नदी तालाब झीलें भर जाएं, चारों ओर हरियाली छाए। नदी तालाब झीलें भर जाएं, चारों ओर हरियाली छाए। कागज की नाव चलाएं, कागज की नाव चलाएं, बच्चे पानी में खूब नहाएं। कागज की नाव चलाएं, बच्चे पानी में खूब नहाएं। सब गर्मी से राहत पाएं, सब

गर्मी से राहत पाएं, मैं डॉक्टर रिटर रिटर आएं। सब गर्मी से राहत पाएं, मैं डॉक्टर रिटर रिटर आएं। मिट्टी की खुशबू सबको भाए, मिट्टी की खुशबू सबको भाए, किसानों का मन हर्षाए। मिट्टी की खुशबू सबको भाए, किसानों का मन हर्षाए। आसमान में इंद्रधनुष दिखाए, आसमान में इंद्रधनुष दिखाए, वर्षा सुहावना मौसम लाए। आसमान में इंद्रधनुष दिखाए, वर्षा सुहावना मौसम लाए। चौथी कविता है गर्मी। गर्मी मौसम बच्चों को बहुत सुहाता है। गर्मी मौसम बच्चों को बहुत सुहाता है, पढ़ने से है छुट्टी घूमने मिल जाता है। पढ़ने से है छुट्टी घूमने मिल जाता है। प्राकृतिक स्थल लोगों से भर जाते हैं, प्राकृतिक स्थल लोगों से भर जाते हैं, यहाँ आकर गर्मी से सब राहत पाते हैं। प्राकृतिक स्थल लोगों से भर जाते हैं, यहाँ आकर गर्मी से सब राहत पाते हैं। सर्दी वर्षा के बीच गर्मी मौसम आता है, सर्दी वर्षा के बीच गर्मी मौसम आता है, जो सब मौसमों को सुखद बनाता है। सर्दी वर्षा के बीच गर्मी मौसम आता है, जो सब मौसमों को सुखद बनाता है। पांचवी कविता है माँ। माँ सबसे सुंदर है, माँ सबसे सुंदर है, माँ प्रेम का समुंदर है। माँ सबसे सुंदर है, माँ प्रेम का समुंदर है। माँ सबसे पास है, माँ सबसे पास है, माँ से यह सांस है। माँ सबसे पास है, माँ से यह सांस है। माँ ममता का साया है, माँ ममता का साया है, माँ धूप में छाया है। माँ ममता का साया है, माँ धूप में छाया है। माँ ने संसार दिखाया है, माँ ने संसार दिखाया है, माँ में ही जग समाया है। माँ ने संसार दिखाया है, माँ में ही जग समाया है। अगली कविता है वह कौन है। वह कौन है जो सूरज में प्रकाश भर संसार को प्रकाशित कर जाता है। वह कौन है जो चंद्रमा में रोशनी बनकर जग को रोशन कर जाता है। वह कौन है जो प्राण वायु बहाकर सबको जीवन दे जाता है। वह कौन है जो प्राण वायु बहाकर सबको जीवन दे जाता है। वह कौन है जो आकाश में बूंदे बनकर धरती पर गिर जाता है। वह कौन है जो खुशबू और रंग भर फूलों को खिला जाता है। वह कौन है जो खुशबू और रंग भर फूलों को खिला जाता है। वह कौन है जो धरती को हरियाली से भर जाता है। वह कौन है जो बीज बनकर अनगिनत फसलें उगाता है। वह कौन है जो बीज बनकर अनगिनत फसलें उगाता है। वह कौन है, वह कौन है जो ना हो तो, वह कौन है जो ना हो तो जीवित मृत हो जाता है। वह कौन है। अगली कविता है कौन सी डगर। यह कौन सी डगर है, यह कौन सी डगर है, यह कौन सा शहर है। यह कौन सी डगर है, यह कौन सा शहर है, आए हैं हम क्यों यहाँ, आए हैं हम क्यों यहाँ, ये किसका घर है। यह कौन सी डगर है, यह कौन सा शहर है, आए हैं हम क्यों यहाँ, ये किसका घर है। मैं कौन हूँ तुम कौन हो, मैं कौन हूँ तुम कौन हो, ये कौन है वो कौन है। मैं कौन हूँ तुम कौन हो, ये कौन है वो कौन है। देखो तो सब में भेद है, देखो तो सब में भेद है, मानो तो सब अनेक है। देखो तो सब में भेद है, मानो तो सब अनेक है, जानो तो सब में एक है, जानो तो सब में एक है। तुलना। सूरजमुखी और गुलाब आपस में बातें कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे। सूरजमुखी ने कहा, मैं सूर्य के प्रति निष्ठावान हूँ। सूर्य जिस तरफ जाता है मैं उसी तरफ घूम जाता हूँ। मेरा रंग पीला है और मुझे देखकर लोग सकारात्मकता और खुशी से भर जाते हैं। गुलाब ने कहा, मेरा रंग लाल है, मुझ में बहुत अच्छी सुगंध आती है, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत उपयोगी हूँ, मैं इतना विशेष हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए कांटे रूपी पहरेदार हैं। दोनों अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, दोनों का अपना अद्वितीय स्थान है, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों आपस में अपनी तुलना करने लगे। सूरजमुखी गुलाब होना चाहता और गुलाब सूरजमुखी। परिणाम स्वरूप तुलना के कारण दोनों ने अपने समय और शक्ति को व्यर्थ गवा स्वयं को खो दिया। किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। संसार में सब अपने आप में विशिष्ट हैं। प्रतियोगिता। खरगोश तालाब के पास हरी हरी घास खा रहा था, तभी तालाब की मछलियां आई, खरगोश से बातें करने लगी। हंसते हुए बोली, अरे भैया, जमीन पर तो तुम बहुत दौड़ लगाते हो,
क्या तुम पानी में तैर सकते हो? खरगोश सोचने लगा, फिर बोला, आप लोग भी पानी में बहुत अच्छा तैरती हैं, क्या आप जमीन में दौड़ लगा सकती हैं? मछलियाँ शांत हो गईं, विचार में पड़ गईं, फिर बोली, इसके लिए हम प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें आपको पानी में तैरना है और हमें जमीन पर चलना है, देखते हैं कौन जीतता है। समय निश्चित हुआ, आज प्रतियोगिता थी। खरगोश आया और तालाब की तरफ बढ़ने लगा। मछलियां जमीन की तरफ आगे आईं। जैसे ही खरगोश पानी में उतरा, डूबने लगा, हाथ पैर चलाने लगा, उसकी सांसें रुकने लगीं। जैसे तैसे प्राण बचाकर बाहर निकला। ऐसे ही मछलियां जैसे ही पानी से बाहर निकली, उनकी सांसें रुकने लगीं, तड़पने लगीं और फिर पानी में कूद गईं। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। इस तरह प्रतियोगिता के कारण दोनों के प्राण जाते जाते बचे और उन्हें यह अनुभव हुआ कि प्रकृति ने सभी को कुछ विशेष गुण दिए हैं। यहाँ हर कोई अद्वितीय है, किसी से किसी की कोई तुलना नहीं। हमें स्वयं को जानकर अपना सर्वश्रेष्ठ जरूर करना चाहिए।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी। इसके अंतर्गत आपने सुनी काव्य गोष्ठी। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। FM बैंड 102.6 MHz पर 5:33 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: मई उपस्थिति में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के छठवें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट।
1: संस्कृत ज्ञान, भारतीय परंपरा और वैदिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आज उज्जैन की पावन धरती एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण की साक्षी बनी। कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल सभागृह में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने की, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार सहित देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, संत और विद्वान इस अवसर के सहभागी बने। दीक्षांत समारोह में जहां विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधियों से अलंकृत

0: किया गया, वहीं पीएचडी, स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की गई। प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण एवं रजत पदकों से सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत भाषा और वैदिक मूल्यों के संरक्षण तथा संवर्धन का संदेश इस समारोह ने पूरे शिक्षा जगत को दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा,
1: व्याकरण शास्त्र के प्रणेता, शब्द ब्रह्म के उपासक महर्षि पाणिनि के पावन नाम प्रस्थापित विश्वविद्यालय का दीक्षांत केवल उपाधि वितरण का प्रयास प्रसंग नहीं है, अपितु संस्कृत की सनातन ज्ञान परंपरा के नई पीढ़ी के सौंपने का पवित्र अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के साक्षी पालकों एवं आचार्य और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जावान विद्यार्थियों को हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिस प्रकार महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 3,959 सूत्रों में पूरी भाषा को नियमबद्ध किया, उसी प्रकार आप सभी स्नातकों भावी जीवन में अपने ज्ञान, अनुशासन और चरित्र के राष्ट्र और समाज के संस्कारित आपको करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और गर्व करने का एक ऐतिहासिक अवसर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संस्कृत को केवल पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा नहीं माना, बल्कि इसे विज्ञान, दर्शन, गणित, कला और आधुनिक तकनीक के वाहक के रूप में मान्यता दी है। यह नीति त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से संस्कृति को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक मुख्य धारा में लाने का एक सशक्त रोड मैप प्रस्तुत करती है। अब समय आ गया है कि संस्कृत को संग्रहालयों की प्राचीन लिपियों से बाहर निकलकर आधुनिक अनुसंधान के जीवंत भाषा बनाए। विश्वविद्यालय से अपेक्षा है कि भारतीय ज्ञान की प्रणाली का दुनिया में प्रचार के लिए संस्कृत की ज्ञान विरासत को आधुनिक भाषा में प्रचार करे, मगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी सारे हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर ऐलान किया है हमारे को 2047 में विकसित भारत जो बनाना है, तो ऐसे पुराने जो हमारे संस्कार है, पुराने जो प्रकृति की जो हम पूजा करने वाले हैं, ऐसा समाज हम तैयार करेंगे तो सही दिशा में हम विश्व गुरु बनेंगे। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, ऐसे अपेक्षा के साथ भारत माता की जय।
0: कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने सभी दीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देने के साथ कहा,
2: आज जिस विश्वविद्यालय की स्थापना जिस उद्देश्य से, जिस भाव के साथ मैं समझता हूँ की गई थी, इस दीक्षांत समारोह से उसके उद्देश्यों की पूर्ति हुई हम सबको दिखती है। आज जिन भी बंधु भगनी को उपाधि मिली है, मेडल मिले हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन जैसा कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं है, शिक्षा का एक पड़ाव है, लेकिन आगे जो चुनौतियां हैं उनको सबको स्वीकार करने की भी आवश्यकता है। हमको अपने देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के उस ज्ञान को, जिस ज्ञान के आधार पर हम दुनिया में कभी विश्वगुरु कहलाते थे, फिर से विश्वगुरु बनने का संकल्प यदि हम सब में है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। और विश्वगुरु बनने के वाहक के रूप में आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब बनने वाले हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने विशेष रूप से सभी विषयों के साथ जोड़ करके पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में लागू कर दिया है। उस अनुसार पुस्तकें बन चुकी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा यानी भारत के शास्त्रों के बारे में ही केवल पढ़ाने का विषय होगा, ऐसा नहीं है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, ये सारे हैं जिनमें कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, और इसलिए उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाज के सामने रखना। लेकिन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में भी क्या भारतीय वैज्ञानिकों का, भारतीय समाज में जो परंपरा है, क्या वो वैज्ञानिक सम्मत है या नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण समाज के सामने आ जाने लगा।

0: रहा है, और इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जब गर्व करने का विषय कभी हमारे सामने आता है तो मैं कई जगह उदाहरण देता हूं। मैथमेटिक्स में तो दुनिया में सबसे अग्रणी हम ही रहे, और भारत के दर्शन में सभ्यता में जो भूगोल शब्द का वर्णन होता है, भू यानी पृथ्वी और गोल यानी पृथ्वी गोल है, ये हमारे देश के शब्द है। और इसलिए भारत के विद्यार्थियों के मन में गणित के प्रति जो अथाह विश्वास और का भाव होना चाहिए, वो निश्चित रूप से हमको विश्व विजेता की ओर आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराएगा। ऐसे कई सारे विषय भारतीय समाज में विज्ञान की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, परंपरा है, पर क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में एक भाव पैदा कर दिया कि आपके पूर्वज तो अंधविश्वासी थे, आपके पूर्वज तो रूढ़िवादी थे, और उस कारण से हमने हमारे अच्छे चीजों को भी, वैज्ञानिक चीजों को भी, विज्ञान के आधार पर समाज में स्थापित चीजों को भी छोड़ने का क्रम बना लिया, या छोड़ा नहीं तो चुपचाप करने का क्रम बना लिया। मैं एक उदाहरण के साथ आप मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत के समाज में, हमारी सभ्यता में प्रकृति के साथ जो विशेष प्रेम है, स्नेह है, और उसके प्रति हम जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और दुनिया में जो आज झगड़ा चल रहा है, लोग ईरान अमेरिका जैसे झगड़ा चल रहा है, काय के लिए झगड़ रहे, ऊर्जा के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए, ये भी तेल भी जमीन से जो निकलता है ये भी कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से ही कन्वर्ट हुआ है, और जो कोयला है वो भी जमीन में है, कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से कन्वर्ट हुआ है। और इसलिए हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, उन्होंने उस वैज्ञानिक पक्ष को हमारे समाज में, मान्यता में, निरंतर परंपरा में उसको आगे बढ़ाया है। और इसलिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे सामने, देश के सामने भी है, मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जब 2047 यानी आजादी के 100 साल पूरे होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, समाज में कई सारे लोग जिसको विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, वो विकसित गुरु भारत, विश्व गुरु भारत जब बनेगा, तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे सूर्य की ताकत पर, हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान के ताकत पर भारत दुनिया में ऊर्जा का केंद्र बनेगा, और केवल हमारे देश की ऊर्जा की पूर्ति करने वाला देश नहीं होगा, हम दुनिया के भी कई देशों की ऊर्जा की पूर्ति कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा बड़ा पक्ष होने वाला है कि 2047 का भारत दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत बनेगा, क्योंकि इस देश के किसान अपनी भारत माता से, अपनी वसुंधरा से जो अनाज उत्पादित करेंगे, वो केवल भारत के लिए नहीं होगा, वो दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत होगा, क्योंकि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को स्वीकार किया है। जयतु भारतम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
1: कार्यक्रम में माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर व्यास ने अतिथियों के स्वागत में कहा,
2: मित्रों, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय की एक इस यात्रा में, इस विश्वविद्यालय को विगत पर्याय में नैक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसी सत्र में अभी 8 जून को अभी इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 12वीं का परीक्षण इस विश्वविद्यालय का संपन्न हो गया है। हमारे इस विश्वविद्यालय के 12वीं होने के बाद जो हमारी संभावनाएं बढ़ी हैं वो ये है कि हमें ODL संचालित करना है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा हो सके। और जो बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 14 विद्याएं और चतुष्षष्ठी कलाएं, इनका स्वरूप आना चाहिए समाज के सामने, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय इन दिशाओं में बहुत सार्थक प्रयास करेगा, और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। पुनः एक बार माननीय कुलाधिपति जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, दोनों सांसद सदस्यों का, माननीय सारस्वत अतिथि वरखेड़ी जी का, और मानद उपाधि पाने वाले पांडे जी का, तथा मंच पर विराजमान समस्त कार्य परिषद सदस्यों का, संकाय अध्यक्षों का, विद्या परिषद सदस्यों का, साधारण परिषद सदस्यों का, समागत समस्त अतिथियों का भूयो भूया स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम इत्युक्त्वा विरमामि, धन्यवादः।
1: कार्यक्रम के माननीय सारस्वत अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने कहा,
3: माननीय कुलपति महोदय तथा सभी साधारण सभा और विशिष्ट सभा और प्रशासन मंडल के सभी सदस्यों को मैं अभिनंदन करता हूं। इसलिए मैं छात्रों से निवेदन करता हूं, आज दीक्षांत हो गया, हमारा पूर्ण उपाधि प्राप्त होगी, लेकिन पूर्ण उपाधि का वास्तविक अर्थ समाज देगा, क्योंकि आज केवल हमने प्रमाण पत्र दिया है। यहाँ के माननीय कुलाधिपति ने अपने अधिकार से विश्वविद्यालय की ओर से।

0: आप सबको एक उपाधि प्रमाण पत्र दिया है। हम सबको जानकारी है उपाधि पत्र के प्रथम पृष्ठ में उपाधि का नाम होता है, हमारा ग्रेडिंग होता है, लेकिन उपाधि के पृष्ठ में खाली पत्र होता है। रिक्त पत्रे समाज लिखति, प्रमाण पत्रे कुलपति हस्तांकनं करोति, परंतु रिक्ते प्रमाण पत्रे रिक्त स्थाने समाज रिक्त स्थानम पूरयिष्यति। उस रिक्त स्थान में ये इस उपाधि के लिए अर्ह है, ये उपाधि के लिए प्राप्त है, उपाधि के लिए पात्र है, और उपाधि प्राप्त होने के बाद यह वास्तविक रूप से समाज के लिए उपकारी है, ऐसे समाज जब निर्णय करेगा तभी प्रमाण पत्र का पूर्णता प्राप्त होगी। आप सबसे उपाधि धारक स्नातक धारकों को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, इस दीक्षांत समारोह के बाद पश्चात निरंतर शिक्षा का आरंभ हो जाए और वास्तविक रूप से समाज से आप प्रमाण पत्र स्वीकार करिए। हमारा धर्म होगा केवल हम शिक्षा से विभूषित नहीं है, यदि हमारे मन में केवल सनातन धर्म के लिए निष्ठा नहीं है, अध्यात्म भक्ति नहीं है, संस्कृति का हमारे गंध नहीं है, और शास्त्र और कवित्व प्रतिभा के साथ यदि समस्त विद्याओं के प्रति हमारे धारणा नहीं है, तो हम वास्तविक रूप से उपाधिधारी नहीं है। इसलिए आज इस उपाधि के साथ अध्यात्मनिष्ठा, सनातन धर्मनिष्ठा, कवित्व शास्त्र प्रतिभा, संस्कृति और समस्त विद्या का प्रतीक के रूप में हमारी पूजा होती है, इसलिए इन सारे विद्याओं का धारक के रूप में हमारा दायित्व तो भी है। मेरा दायित्व तो है, मेरे भारत का धारक हूं मैं, तो भारत का धारणा शक्ति मेरे मुझ में है, इसलिए इस भावना के साथ हम सबको कार्य करना है। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा केवल शास्त्र स्मृति से काम नहीं चलेगी, शास्त्र रक्षा भी होनी चाहिए और शास्त्र कृषि भी होनी चाहिए, शास्त्र का अनुभूति भी होनी चाहिए और शास्त्र दृष्टि के साथ अभिनव शास्त्र सृष्टि भी होनी चाहिए। सभी को छात्रों को यही आदर्श के साथ आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों से मैं वचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।
1: दीक्षांत समारोह में स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज को महामहोपाध्याय डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी शोधार्थियों से कहा,
2: भगवान महाकाल की कृपा है, भगवान विश्वनाथ की कृपा है कि हम लोगों ने एक युग देखा जब 370 धारा हट गई। हम लोगों ने यह देखा भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। हमने ये देखा कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनः उद्घोष हमारी शिक्षा पद्धति में आरंभ हुआ। यह मंच आपको कह रहा है निमित्त मात्र बन जाओ, उठ करके खड़े हो जाओ, भविष्य काल हमारा है, हम उसको करके दिखाएंगे। कितना भी चुनौती भरा समय होगा तो भी क्या, यह उथल पुथल उत्ताल लहर, यह उथल पुथल उत्ताल लहर पत से न डिगा नहीं पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी, भारत माता की।
1: ज्ञान संस्कार और परंपरा के संगम बने इस दीक्षांत समारोह ने विद्यार्थियों को नई उड़ान और नई जिम्मेदारियों का संदेश दिया है। उपाधियों और सम्मान के साथ आज इन विद्यार्थियों ने समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प भी लिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस विशेष प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के 6वें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुति थी और इसका प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।
4: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रही हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 MHz पर।
5: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
6: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है 11:30 से 11:30।

0: रहेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 5:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें। सबसे पहले जगजीत सिंह के स्वर में नजीर बनारसी का ये गुलाम।

आप सुन रहे हैं संगीत सरिता कार्यक्रम आकाशवाणी सागर से। आइए अब सुनवाते हैं आपको गुलाम अली के स्वर में नजीर कैसर की ये गजल।

आकाशवाणी सागर से चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनाएंगे इस सूचना के बाद। सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को प्रातः 8:30 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग कल यानी बुधवार दिनांक 1 जुलाई 2026 को प्रातः 11:00 से की जाएगी। श्रोता कॉल लगाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा फोन नंबर है 240 845। सागर का एसटीडी कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई और आइए श्रोताओं अब सुनवाते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आशा भोंसले के स्वर में गुलजार की ये शब्दशना। आर डी बर्मन ने इसे संगीत से सवारा है और फिल्म का नाम इजाजत।

आइए अब आपको सुनवाती हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत मोहम्मद रफी और आशा भोंसले के स्वर में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीत से संवारा और फिल्म का नाम जुदाई।

0: आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी सागर का प्रसारण आप सुन रही हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाती हैं वार्ता। विषय है प्राचीन भारतीय संस्कृति एक धरोहर। वार्ताकार हैं अर्चना जैन।
4: हमारी वार्ता का विषय है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति एक धरोहर। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सभी जीवों के प्रति साम्य भाव रखा है। इसमें एक सिद्धांत दिया गया है कि सभी जन सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो, किसी को भी दुख का भागी ना होना पड़े। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आश्रम में रहकर वृक्ष की छाया में अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उन्हें सदाचरण, सत्य, अहिंसा एवं वीरता का पाठ पढ़ाया करते थे। विद्यार्थी चाहे राजघराने से हो या सामान्य परिवार से, उन्हें आश्रम के नियमों का पालन करना ही पड़ता था। छात्रों को घर घर जाकर भिक्षा भी मांगनी पड़ती थी। छात्र अलग अलग रास्ते से जाकर घर के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते थे, भिक्षाम देही। इसी विषय को लेकर एक प्रसंग याद आता है कि जब छात्र दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देता था तो एक माँ घर का सारा काम छोड़कर छात्र को आटा देने पहुँच जाती थी। एक दिन पड़ोसी ने पूछ लिया कि माँ तुम ऐसी दौड़ी क्यों चली आती हो, तो उस माँ ने बड़ा ही मार्मिक जवाब दिया कि मेरा बच्चा भी इसी आश्रम में पढ़ता है, वह भी जब भिक्षा मांगने जाता है तो उसे भिक्षा मिल जाती होगी तो उसे कितनी खुशी होती होगी। इसका तात्पर्य था जैसे मेरा बच्चा वैसा ही सभी के बच्चे। यही संभाव की भावना हमारी संस्कृति में पाई जाती है। हमारे महापुरुष गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, विवेकानंद ने हमेशा शांति, सद्भाव, परोपकार एवं अहिंसक प्रवृत्ति का संदेश दिया जो आज भी जीवंत है। आदिनाथ स्वामी ने आम नागरिकों को असी, मसी, कृषि और ऋषि का उपदेश दिया। प्राचीन उपनिषदों में भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। जीवन जीवने की कला का उपदेश देते हुए तीन सूत्रों का प्रतिपादन किया, साधना, संघर्ष, सिद्धांत। इसमें कहा गया कि हमने अपने इष्ट की साधना करो, इससे शांति और आत्मबल मिलेगा। व्यक्ति के स्वभाव में शालीनता, उच्च मानसिकता एवं अपने ईश्वर के प्रति निष्ठा आएगी। दूसरा सिद्धांत है कि संघर्ष करो, जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, उनसे घबराकर हार मानने से अच्छा अपने कर्तव्यों का पालन करो। तीसरा सिद्धांत यह बताता है कि अपने काम में लीन रहो, किसी की नकल ना करते हुए स्वयं कर्तव्य का पालन लगनपूर्वक करते रहो। इसके साथ ही चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सिद्धांतों पर चलने से जीवन का कल्याण करते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करोगे। इसके साथ ही इन 5 सिद्धांतों पर चलकर जीवन का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकते हैं। अर्ज, फर्ज, कर्ज, मर्ज और तर्ज। पहला अर्ज यानी ईश्वर की भक्ति में लीन रहो। फर्ज अपने माता पिता एवं गुरुओं के द्वारा अपने ऊपर जो उपकार किए हैं उनकी भलाई के लिए पूरा पूरा समय दें। कर्ज अपनी तरक्की में जिन लोगों का हाथ है उनकी मदद कर कर्ज पूरा करो। मर्ज अपने शरीर में कोई रोग न होने पाए अपनी दिनचर्या, खान पान, सोना, जागना उचित समय पर करो। तर्ज संसार के साथ ताल से ताल, कदम से कदम मिलाकर चलोगे तो सफलता मिलेगी। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे। इसमें सभी जीवों के सुखी रहने की कामना की गई है। सादा जीवन जीना, मन में उच्च विचार रखना, किसी दूसरे के संपत्ति को देखकर लालच उत्पन्न नहीं होना, यही भारतीय संस्कृति है। महान आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताया जाता है कि एक समय भारत के महान दार्शनिक श्री रामकृष्ण परमहंस अपने मित्र के यहाँ जापान गए। यहाँ पर उनके मित्र का सादा छोटा सा मकान था, उसके सामने गगनचुंबी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई थी। रामकृष्ण जी ने अपने मित्र से पूछा कि सामने खड़ी इन इमारतों को देखकर तुम्हारा मन नहीं ललचाता? तो मित्र ने जवाब दिया कि मेरा तो नहीं ललचाता, पर मेरा घर देखकर उसका मन जरूर ललचाता है कि देखो एक छोटे से मकान में कितनी शांति और सुख चैन से जिंदगी बिता रहा है। स्वामी विवेकानंद जैसे हमारे भारतीय मनीषियों ने उस समय जब हमारे देश गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उस समय अमेरिका जैसे साधन संपन्न देशों में धर्म का प्रचार करने गए। वहाँ के लोगों ने स्वामी जी से सवाल किया कि आपने अपने देश में भगवान का प्रचार कर लिया जो यहाँ पर विदेश में प्रचार करने आए हैं? स्वामी जी ने बड़ा ही सटीक जवाब दिया कि हमारा देश तो आध्यात्मिक और संस्कारवान है, आस्थावान को तो हमेशा भगवान याद आते हैं, आप जैसे अमीरों को भगवान याद आए, इसलिए मैं आपके देश में धर्म का प्रचार करने आया हूँ। हमारे देश के अनेक राजा महाराजा जो कि जंगलों में घास फूस की रोटी बनाकर खाते रहे, लेकिन मुगलों की आधीनता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार से हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में उल्लेख है कि किसी पर भी अनावश्यक आक्रमण नहीं करना, उसके संपत्ति पर अधिकार नहीं जमाना, जैसा जितना हमारे पास है उसी में आत्मसंतोष प्राप्त करना, यही जीवन का लक्ष्य हुआ करता था। हमारे धर्म गुरुओं ने इस जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। प्रत्येक को आच्छादित करते हुए समय सीमा एवं मर्यादा पूर्वक पालन करते हुए रहना सिखाया। विद्यार्थी जीवन बड़े संयम और साधना में रहकर निर्वाह करने की सलाह दी जाती थी। इसके साथ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार निर्धारित किए गए थे। इन संस्कारों में जीवन पर्यंत तक पालन करना सुनिश्चित किया गया था। देश का मुकुट हिमालय, अनेक कलकल बहती हुई नदियाँ, पर्वत श्रृंखला, जंगल, झील व झरने देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, प्रयाग, मंदाकिनी नदी का किनारा, चित्रकूट एवं सरयू नदी का तट आज भी जीवंत उदाहरण हैं। यह बात आज भी प्रचलित है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हो। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा राष्ट्रगान एवं बंकिमचंद चट्टोपाध्याय जी का राष्ट्रगीत हमेशा सम्मान पूर्वक अनुशासन में गाया जा रहा है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति को नमन और प्रणाम करते हुए, इसको जीवंत बनाए रखते हुए, इसका पालन कर देश को सर्वोच्च शिखर पर रहने का प्रयास जारी रखें। हमारी भारत की भूमि पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा अर्थात किसी भी तरह की किसी जीव के साथ हिंसा ना करना, सत्य अर्थात कभी भी किसी भी तरह का झूठ ना बोलना, अस्ते अर्थात बिना अनुमति के किसी की भी वस्तु को ग्रहण ना करना, अपरिग्रह अर्थात किसी की वस्तुओं को अधिक से अधिक संग्रह ना करना, जितनी आवश्यकता हो उतने ही वस्तुओं का संग्रह करना। और आखिरी सिद्धांत उनका था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात अन्य कोई दृष्टि ना रखना, कुदृष्टि ना रखना, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांतों को बताया और उसका पालन करने का उपदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी ने हमें संदेश दिया, जियो और जीने दो। इन सिद्धांतों का प्रतिपादन करके हर जीव सुखी रह सकता है।
0: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, प्राचीन भारतीय संस्कृति एक धरोहर। वार्ताकार थी अर्चना जैन। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को प्रातः 8:30 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग कल यानी बुधवार 1 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। श्रोता कॉल लगाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा फोन नंबर है 240 845। सागर का एसटीडी कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी सागर है। 6:30 होने को है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप
1: 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए संगीत सरिता, और शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा जय माला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 बजे हवा महल में आज सुनिए नाटिका उनके महबूब। लेखिका है विमला रैना, निर्देशन किया है लोचन बख्शी ने। रात 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए, और 9:30 पर आज के फनकार, जो केंद्रित है संगीतकार कल्याण जी पर। रात 10 बजे छाया गीत में आज सुनिए ममता सिंह को। कल सुबह 6:05 पर वंदनवार और चिंतन। 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान का भाग सुनिए 236। 236 संगीत सरिता इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, श्रृंखला का पहला भाग। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार, संपादन सहायक झरना सोलंकी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम शाम 6:45 पर दोबारा सुना जा सकता है। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7 बजे, और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार की। त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। कल सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार सी अर्जुन पर। आलेख और स्वर है अशोक सोनावने का, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। कल दिन में 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए सेलोलाइट के सितारे में गीतकार, शायर और लेखक शकील आजमी से की गई ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहायक काजल भदरंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11 बजे मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सुनिए रंग तरंग, और 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की तरह कल भी 1 बजे हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर, कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। 3 बजे सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के विषय हैं पारिवारिक चिकित्सक, साड़ियों का संसार, शब्द हमारे विचार आपके, और व्यंजन प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए आज के मेहमान में वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर राठी से की गई मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 5:00 छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा, और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल 7:00 कार्यक्रम जयमाला, और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे राग अनुराग। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी दिव्य स्वप्न। लेखक हैं मनसुख देसाई, निर्देशक हैं सत्येंद्र शरत। रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 बजे छाया गीत में सुनिए मंदाकिनी जोशी को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे, मध्यान्ह 12 बजे, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। कल सुबह और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम संध्या रंजन में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में। गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन का लिखा गीत, फिल्म का नाम है गीत गाता चल।

मुकेश और साथियों की आवाज़ों में अगला गीत है, रचना है भरत व्यास की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है संत ज्ञानेश्वर।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो दुर्लभ हैं और अमूल्य हैं। आइए आज सुनते हैं किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत।
2: डॉक्टर गंगूबाई हंगल जी नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: सुना है कि आपकी माता जी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी, फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली?
3: उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरे माई कर्नाटक गाती थी, हम किसी को नहीं सुना उस वक्त।
2: अच्छा।
3: इसलिए जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे, वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा गाने लगे
2: हिंदुस्तानी संगीत।
3: अच्छा। उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे, मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
2: हिंदुस्तानी संगीत
3: सिखाएंगे। बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गए, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके
2: संगीत विद्वान
3: हुए, अब्दुल करीम खान के शागिर्द थे।
2: अच्छा।
3: उसके पास एक साल तक हमने
2: शिक्षा
3: पी। वो एक साल में मुझे ऐसा लगता है 50 धृत लय की वो चीजें बंदिश हमको बताए।
2: अच्छा।
3: मेरे आवाज पतला बहुत था।
2: अच्छा।
3: वो तो 3-3 मिनट में एक एक बंदिश में 2-2 ताने ऐसे कुछ वो बताए थे।
2: अच्छा।
3: हम ऐसे छोटा मोटा, कहीं हमारे माँ का प्रोग्राम हम बीच में हुए, मैं भी गाते थे,
2: स्वर लगाते थे।
3: नहीं अलग से, क्योंकि मेरे माँ ने थोड़े बहुत शुरू में जो मुझे सिखाए स्वर के ज्ञान उनसे ही हो गया मेरे माँ से।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो सुबह सुबह, उस वक्त मुझे बहुत छोटी थी उम्र में, 9-10 साल की, 5 बजे मुझे उठाती थी।
2: अच्छा।
3: हाँ, कर्नाटक स्वर तो कर्नाटक हिंदुस्तानी तो अलग नहीं है,
2: बिल्कुल सही बात।
3: इसलिए स्वर का साधना मेरे माँ से मिल गया।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो उनकी पद्धति से मुझे रोज वो 1-1.5 घंटा सूर्यास्त करवाती थी। बाद में बीच में थोड़ा कुछ वजह से बंद हुआ, बाद में सवाई गंधर्व उसके पास थोड़े से बड़ी हुई थी, उस वक्त से हमने
2: उच्च शिक्षा
3: प्राप्त हो पाई।
2: डॉक्टर गंगूबाई जी।
3: हाँ।
2: आप तो किराने घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं।
3: हाँ।
2: क्या आप किराना घराने के विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे?
3: किराने घराने ऐसे हैं, स्वर अच्छी तरह से लगाना, बाकी का बेसुर गाते ऐसे नहीं
2: है। बिल्कुल।
3: ये स्वर में ज्यादा ध्यान रखे हैं, इसलिए वो तो ऐसे बोलते हैं तंत्रवाद्यकार थे इनके पूर्वज, ऐसे कैसे भी वो ज्यादा स्वर का ध्यान रखते हैं, स्वर के ज्यादा महत्व देके स्वर एकदम आ करके नहीं लगाएंगे, उसको गोल ऐसे आ ऐसे करके लगा के एकदम स्वर में गाड़ना, बोलते हैं क्या बोलते, मुझे याद नहीं,
2: मग्न हो जाना।
3: ऐसे गाने का हमारे किराने घराने की पद्धति है।
2: क्या आप गुरुकुल पद्धति में विश्वास रखती हैं?
3: हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संगीत है, फिर वो अच्छे हैं, क्योंकि प्रचार के लिए गायक बनना हो तो गुरुकुल पद्धति चाहिए, नहीं तो उनके लिए क्या होता है, किस घराने से जाना, किसके पास सीखना, ये कुछ मालूम हो जाता है उनको।
2: अच्छा।
3: गायक बनने के लिए गुरु पद्धति, मैंने तो शिक्षा पाई है, मुझे उस विश्वास उसी में है।
2: अच्छा, आप नए छात्रों के लिए क्या कहने के, कैसे रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसी करनी चाहिए?
3: वो तो किसी का आवाज पतला रहते हैं, किसी का बुद्धि अच्छा रहता है, आवाज नहीं रहते, वो गुरु ने बताना चाहिए किस पद्धति से वो
2: रियाज
3: करना। हमको तो हमारे गुरु जी ने एक एक स्वर का सुबह बैठने से तोड़ी शाम में मुल्तानी ऐसे हमको रियाज करने के लिए मुझे बताए थे। ऐसे एक एक स्वर षड्ज नीचे जितने जाता है खर्च पे उतने एक एक स्वर सांस जब तक है उस तक एक एक स्वर
2: कहना चाहिए।
3: और बाद में उसका ताने के तरफ एक एक श्वास में कितनी दफे
2: ताने
3: आते हैं। सा नी धा बा पदानीसा ये जो है
2: जी
3: श्वास बढ़ाते ऐसी इतनी छह दफे सात कितने आते हैं इतने ऐसे हमको बताए थे और विस्तार करने में तीन स्वर सारेगा गारेगा इतनी उनके अलग अलग ढंग होता है। बाद में गांधार के बाद मध्यम मध्यम के बाद ऐसे जितने हमारे बुद्धि काम करेगा करना गाना ये हमको सिखाए उस रास्ता ठीक बताना ये गुरु का काम है।
2: तो आप कहते हैं कि संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटी हो या संगीत के महाविद्यालय हो वहाँ संगीत की शिक्षा यानी कि वहाँ से कोई संगीतकार नहीं हो
3: बहुत पाता। कम हमने तो देखे ही नहीं ऐसे क्योंकि क्या होता है स्कूल से वो थोड़ा बहुत संगीत हो तो हो जाता है और एकदम कॉलेज में आना कॉलेज में जब आते हैं 16 वर्ष तो हो जाते हैं उस वक्त कहीं ना कहीं संगीत शुरुआत होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्कूल से आजकल हम देखते हैं स्कूल में प्रार्थना का अगर दूसरे को उनको पता नहीं साल में एक गायक उसमें से निकलते बहुत कुछ होगा।
2: हाँ तो आजकल आपको किस तरह के श्रोता मिलते हैं यानी कि शास्त्रीय संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले या
3: वो हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता हम जो गाते वही सुनने वाले ही हमको मिलते हैं।
2: अच्छा
3: आजकल उनको पता है गंगू भाई दूसरे कोई कुछ नहीं गाएगी वो जो सुनने वाले वही आते हैं मुझे कोई फरमाइश नहीं करते।
2: अच्छा
3: शुरू बचपन में सब कुछ गाती थी हम मराठी गजल ठुमरी हमने मुझे बाद में ऐसे लगा इसमें करने का मुझे फुर्सत नहीं मिलते।
2: अच्छा
3: ये मुझे मेरा ये है वो
2: अच्छा
3: इसलिए यही गाते चले आए हमने।
2: छात्रों के लिए आपका क्या आदेश है?
3: श्रद्धा भक्ति से जो गुरु बताते हैं एक करना फिर विश्वास से।
2: अच्छा आप इतने राग गाते हैं उनमें से आपको अत्यंत प्रिय कौन सा राग है?
3: कभी कभी एक एक राग जम जाता है ज्यादा से ज्यादा से करुणा रस सुबह का राग मुझे ज्यादा मुझे गाने के अच्छा लगता है। वो प्रोग्राम में तो सभी राग एक एक दफे हमको ऐसा लगता है ये राग मुझे इतने ही नहीं फिर वो ही जम जाता है कभी कभी ऐसा हो जाता है ज्यादा से कोमल स्वर का मुझे पसंद है।
2: क्या आप एक उनकी झलक दिखाएंगे किसी एक राग में?
3: अच्छा ये जो हम बता रहे हैं कोमल रेखा वसावरी।

0: धन्यवाद डॉक्टर गंगूबाई जी।
1: आज आपने सुनी बातचीत किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत। आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र पर रिकॉर्ड की गई ये बातचीत वर्ष 1990 में विविध भारती के संगीत चर्चा कार्यक्रम में प्रसारित हुई। इसकी प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। वर्ष 1913 में जन्मी गंगूबाई हनगल जीवन भर संगीत की साधना करती रही। वैसी कठोर साधना, अथक परिश्रम और कड़े रियाज ने उन्हें गिने चुने शीर्षस्थ कलाकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। उनके अद्भुत कंठ से निकलकर स्वरों का जो आविष्कार होता था उसका कोई सानी नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है। वर्ष 2009 में वे असीम में विलीन हो गईं, परंतु उनकी आवाज हम सुन सकते हैं जैसे उनसे की गई ये बातचीत अभी हमने सुनी। इसी तरह आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ राग चंद्रकौंस। 3 ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, कब घर आओ पिया।

आप सुन रहे थे विविध भारती के खजाने से। आज की कलाकार थीं विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णामूर्ति और साथियों की आवाज़ों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

स्थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

इल्जाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

0: कि दे किस में अपन चुनाव करें उनको के जो कम पानी में होवे वाली हाँ, किस्में हाँ। हो कम समय में पकवे वाली किस्में हो तो अपन मतलब मौसम के हिसाब से मानसून के संगे चलते हैं
1: बिल्कुल।
0: और ये बात को भी अपन विशेष ध्यान रखें जो विशेषज्ञ बताते हैं कि जमीन में पर्याप्त नमी होवे के बाद ही अपन को बुआई करने हैं, पहले से अपन को बुआई नहीं करने। अगर ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि पानी छिड़ जाए तो बीज खराब हो जाते, बीज को नुकसान अपन को उठाने पड़ाते। एक अलावा अपन जो भी कर सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण काम है बुआई के पहले के बीज को उपचार अपन जरूर करें और संगे संगे बीज के अंकुरण को परीक्षण भी जरूर कर लेवे जिससे फसल अच्छी हो।
1: बिल्कुल भैया। और ये सब बातें अपने कृषि विशेषज्ञ समय समय के अनुसार बताते ही रहते हैं।
0: बिल्कुल
1: बीज उपचार है, बीज परीक्षण, और बीज परीक्षण तो बिल्कुल ही सरल है देखो भैया, कि भाई अपने गिन के कनू का लेने हैं और उन्हें अंकुरित करवे के लाने डालने हैं बोरा फट्टी पे, और जितने अंकुरित हो जावे वही हिसाब से उनको प्रतिशत निकल आउते
0: हैं। और किसान भैया रहो जो भी ध्यान रखने हैं कि अगर 70% से कम अंकुरण हो रहा है तो अपन या तो बीज बदल दे या बीज थोड़ी सी मात्रा बढ़ा के अपन बुआई कर सकते हैं तो उसे भैया अपनी जो फसल है वह अच्छी हुई है, उपे मतलब पौध संख्या पे प्रभाव ना पड़े। और अपन आगे और भी चर्चा कर रहे हैं, मैंने ओके पहले सुना था जो संदेश।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: तो भैया, संदेश के बाद अपन अपने किसान भैयारों को एक बार फिर स्वागत कराते हैं अपने कार्यक्रम किसान वाणी में।
6: और देखो बिन्ना, अबे कम बरसात की अपन चर्चा कर रहे थे। मनो अब देखो, अपन एक लोकगीत लेके आए हैं। इसमें मछरिया की भी बात हो रही, मैनरे की भी बात हो रही
5: भैया। और हम जो सुन रहे थे कि आप जो जब सुन रहे थे जो लोकगीत, तो बड़े मुस्कुरा रहे थे।
6: तो हम तो जो चाहते हैं कि अपने किसान भैया बिना रहे भी मुस्कुराए, चिंता ना करें, भगवान सब अच्छी बरसात कर रहे हैं और किसान भैयाओं की बोनी को काम भी अच्छे से हो।
5: बिल्कुल भैया,
6: फिलहाल अपन सुनाते हैं जो लोकगीत, मथुरा प्रसाद सुमन को गाओ भाऊ।

0: तो देखो रज्जू भैया कितनो अच्छो लोकगीत हास्य गीत अपने किसान भैया हरों ने सुनो, जाए मछरिया ने ललना सो तलैया में धूम बची महाराज।
1: और बिना ये में सब जो पानी में जीव जंतु सबई को नाम आगा, कछुआ है, सांप है, मंगरा है, मछरिया, मिंदरिया, सब मतलब
0: जश्न मना रहे हैं, है ना।
1: तो अब और कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और जा नोनी सी भेंटवार्ता लेके आए हैं खरीफ फसलों हेतु सामयिक सलाह जा जानकारी दे रहे हैं अंकित रावत सहायक संचालक कृषि और उनसे बतकाव कर रहे हैं अपने नीरज भैया।
2: किसान वाणी कार्यक्रम में आप किसान श्रोता भैया हरों को समय समय पे उपयोगी से उपयोगी जानकारी देवे को उद्देश्य हम सभी जनों को रहत है और निश्चित रूप से यही उद्देश्य की पूर्ति के लाने समय आधारित जो जानकारी रहत है वह जानकारी अपने स्टूडियो में पधारे भए विशेषज्ञों से आप किसान श्रोता भैया हरों तक पहुँचाते हैं। भैया खरीफ बोनी को समय चल रहा है, बहुत जल्द हमारे किसान भैया बोनी कर हैं। आज के अपने कार्यक्रम में श्री अंकित रावत जी पधारे हैं जो सहायक संचालक हैं कृषि विभाग सागर में। रावत जी हम आपको अपने स्टूडियो में खूब खूब स्वागत कर रहे हैं। रावत जी हमारे किसान भैया हरों को ये समय खरीफ की बोनी से जुड़ी भई महत्वपूर्ण जानकारी देवो बहुत ही आवश्यक है। रावत जी हमारे किसान भैया हरों को आसो की स्थिति में कौन कौन बातों को ख्याल रखो चाहिए बोनी में, खासतौर पे सोयाबीन की बोनी में उनको कौन कौन चीजों को ख्याल रखो चाहिए कि अच्छे से अच्छे उत्पादन लाभ प्राप्त हो सके।
3: नमस्कार भैया, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसे कि सब लोगों को विदित है कि वर्तमान में जो अल नीनो इफेक्ट हमारे देश में है, यानी अल नीनो इफेक्ट का प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है। अल नीनो इफेक्ट के प्रभाव से हो क्या रहा है कि जो हमारे प्रदेश में या हमारे देश में स्पेशली है हमारे देश के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों में, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है और खरीफ में लोग बहुत आश्रित रहते हैं, तो वहाँ पे इस चीज का प्रभाव पड़ना संभावित है। और उसका संभावित से ये होना है का आशय है कि या तो हो सकता है हमारे यहाँ जो औसत वर्षा रही हो हमारे जिले की, हमारे प्रदेश की, हमारे विकास खंड की, उससे कम से कम लगभग अपन ये मान के चल रहे हैं 10% के आसपास, या ये अपन कह सकते हैं लगभग औसत वर्षा का 90% से 92% की वर्षा होना संभावित है। ऐसी भविष्यवाणी जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो मौसम के बारे में सारी जानकारी संकलित करता है उसके माध्यम से प्रदाय की गई है। तो चूंकि ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ समय हो सकता है क्योंकि हमें आगे के समय का नहीं पता, हम केवल वर्तमान की चर्चा कर सकते हैं, वर्तमान का बता सकते हैं, लेकिन आगे एक महीने बाद, दो महीने बाद या तीन महीने बाद किस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है इस चीज से हम अभिज्ञ रहते हैं, हमको पता नहीं रहता। तो अब चूंकि अनिश्चितता है तो उस स्थिति में हमारे सारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमको बोनी के लिए ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिनमें पानी कम लगता है, हमें उन फसलों से बचना चाहिए जिनमें पानी अधिक लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो खरीफ का जो फसलें रहती है वो टोटल वर्षा पे आधारित रहती है।
2: जी।
3: अगर वर्षा में ही समस्या है तो फसलों का चयन हमको उस हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हम लोग हैं किसान भाई हमारे हैं केवल आपका खेती करते हैं और खेती से जो आय प्राप्त होती है उससे अपना जीवन यापन करते हैं, तो आय हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उस चीज को दृष्टिगत रखते हुए ध्यान रखने वाली बात है कि पहले तो हम ऐसी फसलों का चयन करें जिसमें पानी कम लगता हो, जैसे उड़द की फसल हो सकती है हमारी, सोयाबीन की फसल हो सकती है।

0: सकती है, लगभग 90-92 दिन की फसल हो सकती है, और इस प्रकार की हम फसलों का चयन करेंगे। चयन करने के साथ साथ होगा क्या, सबसे पहले तो जनरली अपने यहाँ रकबा भी उड़द का और सोयाबीन का अच्छा खासा रकबा है सागर जिले में। अधिकतर किसान, या कहना चाहिए जो मेजोरिटी ऑफ किसान हमारे जिले के हैं, वो इन्हीं फसलों पर निर्भर हैं। तो जहां बात आती है बोनी की, तो बोनी करने के लिए सबसे पहले जरूरी रहता है हमको अपनी किस्मों का चयन या बीज का चयन। बीज भी हमको ऐसी वैरायटियों का चयन करना है, अगर अपन सोयाबीन में जाए तो सोयाबीन का जो 90-95 दिन के आसपास की जो वैरायटी है, अगर हम उनका चयन करें तो वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी रहेगी। ऐसे ही हम उड़दा फसल भी बो सकते हैं, उड़दा कम अवधि की फसल रहती है तुलनात्मक, तो उनका अपन चयन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने हमारे लिए बीज का चयन कर लिया, बीज का चयन करने के उपरांत बात आती है अपना अंकुरण परसेंट की। तो हम बीज कोई का लें, हम बीज अपने घर का क्यों ना लें, हम ये मान रहे हैं कि आपने खुद ने अपना बीज बनाया, आपने उसको बाकायदा थ्रेसर कराया, खूब अच्छे से आपने ग्रेडिंग करके रखा है और उसको बड़े अच्छे से संभाल के रखा है। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हमको इसको अगले साल इसकी बोनी करना है।
1: जी जी।
0: लेकिन हो सकता है आप तो उसको अच्छी तरीके से रख रहे हैं, लेकिन अंदर का अपने कुछ नहीं पता रहता, उसका जर्मिनेशन कैसा हो रहा कैसा नहीं हो रहा। तो सभी किसान भाई बोनी करने से पहले अपने अपने बीज का अंकुरण का परीक्षण स्वयं कर लेना चाहिए, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 3-4 दिन के का समय में आपका बीज का परीक्षण, 3-5 दिन में आपको आपका जर्मिनेशन पता चल जाता है कि आपके बीज में कैसा जर्मिनेशन है। हम अगर मान लो अंकुरण को और जल्दी लाना चाह रहे हैं, सोयाबीन ही है, उसको अपन ने 20-1 मिनट अपना पानी वाला कोई एक पात्र है उसमें सोयाबीन का बीज को भुगो दिया, और भुगोने के बाद अपन उसको वही जो आपका एक टाट का पट्टा आपने नीचे बिछा लिया, गीला कर दिया उसको बढ़िया, और उसमें 100-100 बीज की 2 लाइन आपने बना दी, और ऊपर से गीला कपड़ा या कि मोटा टावल या टाट, ये इस प्रकार का अपन ने उसको ढक दिया, उसको अपन थोड़े अंधेरे वाले स्थान में रख देंगे, और बीच बीच में जब उसका आपको लगे कि हाँ उसका नमी कम हो रही है, तो ऊपर से जो वो अपना जो हल्का फुल्का पानी डाल दिया, ज्यादा पानी भी ना डाले, केवल उसको नमी मिलती
1: रहे जी।
0: उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा, ऐसा अगर मान लो जनरली बीज आपने सोयाबीन के बीज में अंकुरण परसेंट होना चाहिए 70%, अगर 70% अंकुरण हो रहा है तो हमारा बीज ठीक है, लेकिन अगर 50% से कम हमारा जर्मिनेशन हो रहा है, जैसे हमने 100 दाने लगाए हैं, अगर उसमें से केवल 50 दाने जम रहे हैं, तो किसान भाइयों को इस प्रकार के बीज से बोनी करने से बचना चाहिए। और अगर कभी कभी अगर मान लो 70 से थोड़ा बहुत कहीं कम आता है, तो उस स्थिति में हम जो अपना बीज दर है उसको बढ़ा के भी बोनी कर सकते हैं, लेकिन 50% से अगर कम आता है तो हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि ऐसे बीज की आप बोनी ना करें। तो उससे होता क्या है कि जब हम यहाँ पे जाते हैं, एक बहुत बड़ा खर्चा हम बीज के ऊपर कर देते हैं, बीज के ऊपर, डीजल के ऊपर, ट्रैक्टर की जुताई के ऊपर, हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जो किराए पे जोतते हैं, तो एक हमारे को ये परीक्षण बहुत आवश्यक है। फिर बात आती जर्मिनेशन के बाद आती है हमको जो हमारा बीज है उसका बीज उपचार करना आवश्यक है। उसका भी एक कारण ये रहता है, अगर हम बीज उपचार करते हैं तो हो सकता है कि हमारे बीज के अंदर कोई ना कोई बीमारी हो, या कोई भविष्य में कोई कीटनाशक कीट का प्रकोप हो ऐसा है कि जो आपकी शुरुआती अवस्था में हो जाए और हमारा बीज को प्रभावित करे, तो इसका बीज उपचार करना भी बहुत आवश्यक है। तो अगर आप मान लीजिए सोयाबीन या उड़दा फसल की हम बात करें, तो बीज उपचार करने का जो सीक्वेंस है वो आपको याद करने के लिए हम बता दें FIR, उसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, वही बीज उपचार का क्रम है। पहले फंजीसाइड से ट्रीटमेंट, फिर इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट, फिर राइजोबियम से ट्रीटमेंट। जितनी आपकी दलहनी फसलें रहती हैं उनमें राइजोबियम कल्चर से हम ट्रीट करें तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसका कारण ये रहता है कि जो आपकी जितनी भी जो ये दाल वाली फसलें रहती है उनकी जड़ में गांठें पाई जाती हैं। वो गांठें क्या रहती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन तत्व हमको आवश्यक रहता है हमारे पौधों के लिए, उसको वो खींचती है और खींच के हमारे पौधों को उपलब्ध करवाती है ना, तो वो कहलाता है राइजोबियम। और जो उसका कल्चर रहता है तो उस बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, तो हमारे जड़ों को और ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करने में सहयोग प्राप्त होता है। अब बात आती है फंजीसाइड की, तो फंजीसाइड कई प्रकार के फंजीसाइड हमारे बाजार में उपलब्ध रहते हैं, अपन अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। वर्तमान में कार्बोक्सिन प्लस थायराम है ना, ये फंजीसाइड 2 ग्राम फंजीसाइड को अपन 1 किलो बीज में, या आप ये कह सकते हैं 2 ग्राम फंजीसाइड प्रति किलो बीज में, अगर मान लो हमारा 100 किलो बीज है तो उसकी गणना करके अपन उसको ये मान के चल रहे हैं कि 200 ग्राम लगेगा, जैसा भी अपनी बीज की मात्रा रही उस हिसाब से 2 ग्राम फंजीसाइड प्रति किलोग्राम बीज की दर से अपन मिला के उसको बाकायदा अच्छे से उपचारित कर लेंगे, पहले फंजीसाइड से। फंजीसाइड से उपचारित करने के बाद कुछ समय बाद अपन उसको करेंगे जो मैंने आपको क्रम बताया FIR, इंसेक्टिसाइड की ओर जाएंगे। इंसेक्टिसाइड में कभी कभी क्या रहता है, आपने देखा होगा सोयाबीन उड़दा में आपका स्टेम फ्लाई का अटैक होता है, रस चूसक इल्ली चूसक एक कीट रहता है उसका अटैक होता है, तो उससे होता क्या है कि आपका ये येलो वैन मोजिक की संभावना ज्यादा रहती है
1: जी,
0: और
1: जी।
0: जर्मिनेशन के टाइम भी कुछ कीटों का प्रकोप हो सकता है क्योंकि जमीन के अंदर कौन देख रहा कौन सा कीट है, बारिश में कीट भी ज्यादा होते हैं है ना, उसका अपन पता भी नहीं लगा सकते। तो अगर अपन उसको जो आपका इंसेक्टिसाइड रहता है इमिडाक्लोपेट 48% 3 ml प्रति किलोग्राम की दर से, इससे हम अपने को बीज को उपचारित कर लेंगे। और उसके बाद सोयाबीन में जैसे हमने चर्चा करी राइजोबियम कल्चर, तो अपन राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद हम इसकी बोनी करेंगे। बात आती है बोनी की, तो बोनी की बात मैं आपको बता दें, जैसे मान लो आपका जो इसमें जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास तत्व की आवश्यकता रहती है, तो सोयाबीन उड़द इनके लिए लगता है लगभग 20-60-40 यानी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता रहती है। जो आपका सोयाबीन रहता है या जितनी भी आपकी तिलहन फसलें रहती हैं, तो जिन जिन में तेल निकलता है उसमें हम अतिरिक्त सल्फर का भी छिड़काव करते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे बीज में चमक भी आती है और हमारा
1: तेल की मात्रा भी
0: बढ़ती रहती है ना। तो इसमें अपन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर के अलावा अपन इसका भी उपयोग कर सकते हैं। बस ये है कि नाइट्रोजन की जो प्रवृत्ति ये रहती है वो घूमता फिरता रहेगा, घूमता भागता रहेगा और पौधों के पास पहुंच जाएगा
1: जी।
0: लेकिन जो हमारा फास्फोरस और पोटास रहता है ये एक जगह स्थिर रहेगा
1: जी,
0: वो हिलेगा ढुलेगा नहीं। और होता क्या है, जड़ नीचे जाती है, जमीन के नीचे जाती चली जाती, इसलिए हम जो फास्फोरस और पोटास रहता है इनको हम जो हमारी बोनी के पहले जो अंतिम जुताई करते हैं उस समय हम डाल देते हैं ताकि हमारी जड़ों को ये उपलब्ध हो जाए। और जो नाइट्रोजन है वो तो आप जानते हैं, और मेन जो आवश्यकता रहती है आपका सोयाबीन उड़द में वो फास्फोरस और पोटास की रहती है। तो ये अपन ने कर दिया। फिर बात आती है हम बोनी की पद्धति का कौन सा उपयोग करें
1: जी।
0: तो बोनी की पद्धति की अगर अपन चर्चा करें तो एक मेड़ नाली पद्धति है, सारे किसान भाई आज के समय सब लोग इस पद्धति के बारे में जानते हैं, उसकी सीड ड्रिल भी आती है। अगर सीड ड्रिल नहीं भी आए तो भी किसान भाई अपना एक टाई निकाल के उसमें वैसे व्यवस्था कर लेते हैं जिससे कि नाली बनती रहती है, और वो जो पंजा टाइप का लगा लेते हैं तो उससे एक साइड से आपका वो मेड़ बनती चली जाती है, दूसरी साइड से नाली बनती चली जाती है, उस पर अपनी बोनी होती रहती है। उसका फायदा क्या रहता है, जैसे वर्तमान में क्या है कि अपन देख रहे हैं कि बारिश कम होना संभावित है
1: जी।
0: या ऐसा भी हो सकता है कि एक ड्राई स्पेल आ जाए
1: जी, एकदम से ज्यादा पानी गिर जाए,
0: एकदम से ज्यादा पानी भी गिर सकता है, और ऐसा हो सकता है कि एक लंबी अवधि तक पानी नहीं आ रहा। लेकिन अब होता क्या है, फिर ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं, तो उसमें अगर हम मेड़ नाली पद्धति से बोते हैं तो एक मेड़ पे अपन ने बोनी कर दी और नाली बनी है। अगर मान लो पानी ज्यादा गिर गया तो नाली से बह जाएगा
1: जी,
0: और अगर मान लो पानी नहीं गिरा तो जो नाली है
1: वो नमी
0: पानी
1: को बनाए रखे लंबे समय तक जी,
0: उसमें बारिश होने के बाद लंबे समय तक बना रहता है और उससे नमी बनी रहती है
1: जी।
0: तो जड़ आपका वो नाली में जितना आपका जो मॉइस्चर है या नमी है उसको वो उठा के अपनी बढ़वार कर लेगा। तो अपनी मेड़ नाली पद्धति पे अगर अपन हमारे किसान भाई बोनी करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और वर्तमान जो स्थिति निर्मित हो रही है उसमें मेड़ नाली पद्धति ही उपयुक्त है। अब बात आती है कि हम कौन सी वैरायटी का चयन करें, तो वैरायटी में अगर आप जाएं तो अभी अपनी सोयाबीन की उन्नत किस्म है JS 2172, JS 3003, JS 2098, JS 2034, NRC 150, NRC 157, और भी कई किस्में हैं, उन्नत किस्मों की हैं। तो आपको जोन सा बीज आसानी से उपलब्ध हो जाए उसका चयन अपन कर सकते हैं। बस ये है कि अपने ये ध्यान रखना है कि लगभग हम ऐसी वैरायटी का चयन करें जो 90-95 दिन के आसपास की हो, समय से अपनी पक जाए और समय से कट जाए, इस चीज का हमको विशेष ध्यान देना है। अब बात आती उड़दा के लिए, तो उड़दा की जो आपकी वैरायटी है IPU 13-1, उसके बाद IPU 11-02, Kota 3, Kota 4, TJU 339, ये उड़दा की अच्छी वैरायटियां हैं। तो हमारे किसान भाई चाहें तो उड़दा की इन वैरायटियों का बोनी में उपयोग कर सकते हैं। और ये है कि वर्तमान जो समय को दृष्टिगत रखते हुए हमारे किसान भाई जिस हिसाब से बोनी करते थे, थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म से हम आपको केवल जता रहे हैं कि थोड़ा सा हमको यानी हमारी फसलों पे ध्यान रहना चाहिए
1: जी, जी।
0: और ऐसा नहीं, ये सावधानी हमको हर सीजन में लेनी चाहिए। हमारी कृषि कारमाला वही है जैसा हम कर रहे थे वैसा ही हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अच्छी खेती करें तो उससे होगा क्या कि हमें खरीफ में अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। यानी डरने की कोई बात नहीं है, सब सरकार आपके साथ रहती, सब आपके साथ खड़े रहते हैं, है ना, अच्छे बुरे हर समय में खड़े रहते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं, जो भविष्यवाणी आ रही है, उस हिसाब से हमें खेती में भी, जैसे हमारी माँ को हम पोषित करते हैं तो वो भी धरती माँ है जो आपको समय समय पे आपको पोषण दे रही है, तो धरती माँ का भी हमको ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। और केवल हमको जो फसल जिस हिसाब से हम लेते आ रहे हैं, जो उन्नत विधियां हैं, उन्नत विधियों के हिसाब से ही लेना है, जिससे कि हम थोड़ा सा अपने और अपने परिवार को सस्टेन कर पाए इस परिस्थिति में। ये चीजें रहती सब संभावित रहती है, बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन इन सावधानियों को अगर हम लेके अपनी खेती करते हैं तो निश्चित ही हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, अच्छी आय प्राप्त होगी और वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
1: जी निश्चित रूप से हमारे किसान भैयारों को वर्तमान मौसम और हालातों को देखत भाई एक बहुत उम्दा खरीफ फसलों की बोनी की सलाह प्राप्त भाई जी में, कम पानी में या ज्यादा पानी में फसलों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये सीजन की फसलों में कौन कौन किस्मों को चयन करो जाए, बीज उपचार में कौन सी सावधानी रखी जाए, और एक अलावा भी दीगर ढेर ऐसी बातें हैं जो अगर भी ध्यान रखें तो निश्चित रूप से किसानी में इस सीजन में हम भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। आज के अपने कार्यक्रम में श्री अंकित रावत जी पधारे जो सहायक संचालक हैं कृषि विभाग सागर में, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं।
2: तो देखो रज्जू भैया, अपने किसान भैयाओं ने कितनी बढ़िया जानकारी सुनी खरीफ फसलों हेतु सामयिक सलाह हतीजा, और जा जानकारी दे रहे थे अंकित रावत और इनसे बतकाव कर रहे थे अपने नीरज भैया।
3: और ये जानकारी के बाद अपन फिर से चल रहे हैं मनोरंजन की तरफ, तो आओ सुनते हैं भगवान सिंह ठाकुर की गाई भाई जा कजरी।

0: तो रज्जू भैया कितनो बढ़िया लोकगीत सुनो अपने किसान भैयाओं ने भगवान सिंह ठाकुर को गाओ भाव। और भैया अब बिरिया हो गई है आज के मंडी के भाव की, तो गेहूं रहो 2125 से 2650 रुपये प्रति क्विंटल, चना 3920 से 5745 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन 3470 से 7545, मक्का रहो 1555 से 1655 रुपये प्रति क्विंटल, तिवड़ा 2615 से 3025 रुपये प्रति क्विंटल और राई सरसों 2920 से 7341 रुपये प्रति क्विंटल।
1: और जे तो हते मंडी के भाव, जे आवक और गुणवत्ता के हिसाब से हते, और आज के मौसम की जानकारी भी किसान भैया रहो दे चले। आज को अधिकतम तापमान रहो 29.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहो। न्यूनतम तापमान रहो 21.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहो। सवेरे की आर्द्रता 100% दर्ज करी गई और संजा बिरिया की 80%। आज की जो वर्षा हुई है 42.6 मिलीमीटर और ए मौसम की कुल वर्षा हो चुकी है 151.8 मिलीमीटर। और इन जानकारियों के संगे ही अब चलवे की बेरा हो रही है। मनो ओ के पहले किसान भैयारों से अपन जाई के हैं कि जैसे ही खेत में पर्याप्त नमी हो जाए अपन समय से बोनी करें, और जो भी खरीफ की फसलों की अपन ने योजना बनाई है पहले से रखे हैं उनको बीजोपचार करके और बीज के अंकुरण परीक्षण करके ही अपन बोनी करें।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो उनकी जो फसलें हैं वे अच्छी रहे।
0: बिल्कुल भैया, और अपन तो जाई के हैं कि आज के समय में कोनो ऐसी बात ना होवे कि आपको परेशानी होवे, सो कृषि विशेषज्ञों की सलाह हमेशा लेते रहे।
1: बिल्कुल, और सागर आकाशवाणी से जुड़े रहे, किसान वाणी कार्यक्रम रोज सुने।
0: बिल्कुल,
1: और एक ही संग अब हो रही चलवे की बेरा, तो सभी किसान भैयारों से अपन लेते हैं आज्ञा और करते हैं
0: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो,
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है।
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
2: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
5: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी सागर है। रात्रि के 8 बजने को है अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
6: Close the ball was below the knee roll and it appears that she is safe because there is a spike when the ball crosses the bat and that's the reason the umpire did not give it as out there and Kim Cotton was absolutely on the target, absolutely spot on. That's experience saying. So Australia has lost one of the reviews, they just got one more review. That was close Sanjay, but except for the edge she was absolutely beaten.
7: बिल्कुल, बल्ले पर हल्का सा एक स्पर्श हुआ था और जिसका एहसास निश्चित तौर पर फील्डिंग कप्तान को नहीं था।
6: Next delivery outside the off stump, a bit of width offered and the batter moves away, plays it down into backward point. That runs taken, very good over from Gardner, just 3 singles given away, 66 for 4 after 13 overs West Indies.
8: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
9: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
8: तुम हो ही भुलक्कड़।
9: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
8: लेकिन मत, जानिए आभा के बारे में।
9: आभा
8: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: तो वेस्ट इंडीज की निगाहें अब कितने स्कोर पर होंगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस गति से वो रन बना रहे हैं और जिस गति से उनके विकेट गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो परेशान करने वाला होगा इस टीम के लिए। ओवल में सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का 103 रन का था 8 विकेट के नुकसान पर। यहाँ 66/4 और 14वें ओवर की शुरुआत हो गई है। ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, अच्छा कट, हालांकि प्रयास था लेकिन 4।
10: ये लगा आभा का चौका।
11: And this one was played late because there was a width offered outside the off stump, but that was very close to the outstretched hand of the fielder there at backward point. And on a given day, that could have easily a large jaunty Rhodes kind of an approach to take pick up that one in the air. Very fortunate for Henry.
7: Sutherland ke is over ki akli gend aur isko halke se keval place kiya tha iklaute run ke liye. Runon ki raftaar अभी भी तकरीबन धीमी सी बनी हुई, 6 के नीचे। स्कोर प्रेडिक्टर बता रहा 125। और अगर आप वेस्टइंडीज के लो टोटल्स का जिक्र करें तो कई बार उन्होंने गोते लगाए हैं। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 43, 26 में श्रीलंका के खिलाफ 49। और इस बार इंतजार किया, पहले से कमिट हुए, गेम के टप्पे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद टप्पा ऊपर आएगा और उसे वो उलट करके थर्ड पैन की दिशा में या फाइन लेग की दिशा में निकालेगी, लेकिन जो अंदाज था उतनी गेंद ऊपर आई नहीं, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुआ नहीं और इसी वजह से चलिए।
12: सही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
13: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है? आता है तीज त्योहार पर।
12: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं, पर ठीक से कभी बात नहीं हुई। नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय। कर दिया।
14: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी,
12: हाँ।
14: वो आपकी बहन है ना?
12: हाँ।
14: उससे मिलना चाहता हूँ।
12: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
14: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
12: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
14: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
12: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
14: वो मेरा नाम जानती है?
12: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
14: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
12: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई। चल कुछ कहेगा भी?
14: जरूर कहूंगा।
12: तो कहना।
14: कहूं क्या तू भाभी? भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे
12: हाँ?
14: शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया। हाँ, कह दिया भाभी,
12: कह दिया। अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
14: राजा के? कहाँ के राजा के?
12: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहीं के, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील तजा ने कहां से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं की, छोड़ दो उसका ख्याल।
14: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी

0: वो तो देवी है देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतने कोमल गंभीर था, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
1: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शीर से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
0: पर भाभी, ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानूं कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
0: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
0: क्या?
1: मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने।
0: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
0: अच्छा
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
0: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है। मैं तो छुपे जाती
0: हूँ। तुम छुप जाओ भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक।
0: जी जानता हूँ। मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है, सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का गर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता। कभी मेरी तमन्ना भी सज कर मुस्कुराती लजाती दुल्हन सी, उनके नजदीक ठहर जाती तो खुदा बंद तेरा क्या होता।
1: वाह वाह।
0: पसंद आया?
1: आहा, क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया? मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ सच तो है।
0: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते।
0: शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात यह है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साय के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जीत हल्का कर लूं।
1: जी बहुत

0: भारी है क्या?
1: शिंजी प्लीज, शिंजी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ।

0: बहुत बहादुर है।
1: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
0: पर वो बहुत वफादार, बहुत लॉयल है।
1: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए। अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
0: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
1: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
0: देखो।
1: देखिए।
0: अच्छा देखूंगी।
1: शील जी, आपके महबूब आपके कमरे में है क्या? मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
0: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
1: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी, अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
0: तो जाइए, कमरा खुला है।
1: कमरा खुला है, लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
0: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बनाएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
0: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
1: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत तो बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
0: जाइए।
1: ओह माय गॉड, ये राजा, इनका महबूब। सच में शील जी, ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी, आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे भाई।
0: राजा, राजा, बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
1: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
0: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करेंगे?
1: कभी नहीं, कभी नहीं, तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
2: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है A.M. तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है A.M. तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाज़ों में। गीत को लिखा है समीर अनजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में

0: लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राज

0: राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
4: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: And then they will face the winners between
6: देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए। मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में वो नगमा जिसे लिखा है शवान रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

0: जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं

ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

0: प्यार वफा
1: सब कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदियो जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊँगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

0: कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोईं और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में,
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कांग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कई बार एक नज़र, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आँखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगु, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ,

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: जाए रात।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली
2: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए

0: वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VBG Ramji Act 2025, Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat.